كذبوا

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: वज़ीर आज़म जे हुकूमत पिमसाने जे ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ एक्शन शुरू। एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर समेत अहम उहिदेदार मुअतल। एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर राणा इमरान सिकंदर शुरूआती तौर ते 120 ॾींहनि लाइ मुअतल। NICVH इस्लामाबाद जे चीफ एग्ज़ीक्यूटिव आफ़िसर डॉक्टर मोहम्मद ते एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स मुक़रर। जॉइंट एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर चौधरी वारिस अली ऐं हेड अफ़गानी डॉक्टर नौशील अमजद। डिप्टी एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर शाह ऐं सीनियर रजिस्ट्रार अफ़गानी डॉक्टर निगार नवाज़। एसोसिएट प्रोफेसर पेडाट्रिक्स डॉक्टर सादिया रियाज़। असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी मोहम्मद उस्मान बिन मुअतल। चार्ज नर्स नसरीन ऐं लेडी हेल्थ सिक्योरिटी स्टाफ मारिया खे फौरी तौर ते पिम्स जे एडमिन पोल में रिपोर्ट करण जूं हिदायतूं। डॉक्टर निज़ात यासमीन पिम्स जे चिल्ड्रन वार्डन जी जॉइंट एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर मुक़रर। डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन खे जॉइंट एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर जी चार्ज ॾिनी वई। डॉक्टर शुमैल हेड ऑफ गायनी मुक़रर।
1: रिपोर्ट आएगी तो सब पता चल जाएगा। सारे रिपोर्ट
2: सर, इंतजार आपके रिजाइन का भी मुतालबा किया गया था, आप क्या कहेंगे?
1: वो जो है वो वजीर आजम से पूछे कि मेरे रिजाइन का क्या हुआ है।
2: आपने एक रिजाइन दिया भी है, इस हवाले से भी कुछ इतलात है? आपने रिजाइन को कर
1: दिया, रिपोर्ट आ जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा।
0: मुझी इस्तीफा बाबत वजीर आजम का पुछो वे। सेहत वारो वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल जो साथी वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी सां गॾु पिमसाने जो दौरो। तारिक फज़ल चौधरी चयो त पिमसाने जी जांच रिपोर्ट में साम्हूं ईंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई बि थींदी। पीपल्स पार्टी पिमसाने जी जांच रिपोर्ट पधरी करण जो मुतालबो करे छॾियो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पीपल्स पार्टीअ सेनेटर पलोशा खान चयो आहे त सभिनी जो गठजोड़ आहे। शफ़ाफ़ जांच कीअं थींदी? लॻे थो नंढनि आफ़िसरनि मथां मलबो किरायो वेंदो, वॾनि आफ़िसरनि खे कुझु न थींदो। साने जूं शायदियूं मिटाइण जी कोशिशि थी रही आहे। पिम्स खे 3 सालनि दौरान 22 अरब रुपया मिलिया, पैसा किथे लॻा, कीअं ख़र्च थिया, ऑडिट कराई वञे। वफ़ाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक पारां पिम्स जे हवाले सां नाकामियुनि जो इतराफ़। मुल्की निज़ाम खे बि ॿिटे मयार वारो क़रार ॾेई छॾियो। तकरीब ख़िताब कंदे मुसद्दिक़ मलिक चयो त कंहिं बि सियासतदान जा ॿार पिम्स में इलाज कराइण नथा वञनि, न ई कंहिं सियासतदान जा ॿार सरकारी स्कूलनि में पढ़नि था। हिन फ़र्क़ जे ख़ात्मे ते निज़ाम ठीकु न थींदो।
3: ये तहरीके इल्तफा इस वजह से है कि भाई सब इसमें आकर बोले। ये इल्तफा के बाद जाहिर है फिर बहस मुबासा होगा और फिर ये बात आगे से लेकर
4: सो बहस असा इन करे चाहूं था तो हर सिंध जो मानो जो है इन मामले से गालाइंदो। वो अहम मामलो है, असा चाहूं था सिंध जा मानो बुधन है उनजे असा टेक्निकली तौर ते असा जी मंडे को वटी वरी इन ते रेजोल्यूशन भी पास कंदा से।
0: पीपल्स पार्टीअ पारां नवनि सूबनि ऐं यूनिट्स ते बहस लाइ सिंध असेंबलीअ में पेश कयल रिथ जो दिफ़ा ईवान मां रुगो विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ बि मंज़ूरु कराइण जो ऐलान। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह चयो आहे त सिंध असेंबली पहिरीं बि शबेरा ठहराउ पास करे चुकी आहे। रिथ आणण जो मक़सदु बि मामले ते ॻाल्हाइणु आहे। मोहम्मद अली मलकाणी चयो त नवनि सूबनि ते बहस जो मक़सदु मौक़ो पेश करणु आहे। सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ बि पास कयो वेंदो। मुल्की मईशत मुस्तहकम थी चुकी आहे। महांगाई बि 3% मां घटिजी सिंगल डिजिट ते पहुती आहे। मुआशी इस्तहकाम बाद हुकूमत जो हाणे ध्यानु तरक़ीअ ते आहे। लंडन में पाकिस्तानी कम्युनिटी ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसाक डार चयो त व्याज जी शरह 22% मां घटि थी 11% ते थी वई आहे। आम माण्हूअ जी आमदनीअ में बि वाधि थी आहे। ख़िते में बि पाकिस्तान अहम किरदारु हासिलु करे चुको आहे। कुंभ भरिसां ॻोठ मोहम्मद लाइक बंबरो वासी नौजवान गुलबार बंबरो पुरसरार नमूने फोत वारसनि जो लाश रखी थाणे अॾो धरणो एहतजाज। मुखालफ़नि मथां नौजवान खे ज़हर ॾेई क़तल करण जो इल्ज़ाम। वारसनि जो चवणु आहे त गुलबार बंबरो खे 3 ॾींहं अॻु सुल्तान नज़र राजपुर ऐं ॿिया ज़बरदस्ती वठी विया, जिन ॾेती लेतीअ जे मामले तां गुलबार खे ज़हर ॾेई राणीपुर में फिटो करे छॾियो। असां नौजवान खे गिम्स अस्पताल दाख़िल कराए जिते हू फोत थी वियो। रहीम यार खान में पुलिस पारां मुक़ाबले में ॿ ॾुहारी मारण जी दावा। पुलिस मूजिबि रहीम यार खान जे खानपुर में काइनात बीबी के कत्ल केस में नामजद जवाबदार की मौजूदगी के इतलात छापो आयो तो जवाबदार फायरिंग कई पुलिस के जवाबी फायरिंग सब जवाबदार हुसनैन अलह डो जमाली मार वो नेपाल में आयल बोट के नतीजे में फोतियों जो अंग वधी 616 थी वो 2000 का मू अ भी गुम तिब्बत में सतन जणन के पहुंचने की तस्दीक 554 बदस्तूर गुम भारत भी नेपाल में 320 भारतीय शहर के गुम होने की तस्दीक कर छी नेपाली इख्तियार मूजिब गुम थियल मानन की गोलावारो सिलसिलो जारी है।
5: सोलर ए बैटरी ते
6: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
7: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों तो असा बार बार पंजे बारन के पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो तो असा बार पैर पोलियो का कतरा पी चुको है। मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीण से बार की इम्यूनिटी जो बेहतर थिए थी। हाँ जो कैंपेन अचे थी जैमें असा जो पोलियो जो दींदी उनमें का भी सुई इस्तेमाल न थी बगैर कें दर्द के वैक्सीन जे बार के करा तो जी असो पाकिस्तान इन पोलियो जड़े मुजी मर्ज में जो महफूज रह।
8: अजरक के रंगों से रंगी,
9: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
8: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
9: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

था त हर मर्ज़ जी दवा आहे, लेकिन जेको इश्क जो मरीज़ आहे उनजी दवा ई कान्हे। ऐं उनखे तबीब यानी डॉक्टर तड़े कढी छॾियो त तुंहिंजी दवा असां वटि न आहे। भिड़ाई फरमाए थो तड़े तबीब।

इलाही साईं डॉक्टर सां वेज सां हकीम सां ॾाहे सां मुखातिब थी चए थो ए वेज ए डॉक्टर मूंखे दवा न ॾे मां मर बीमार हुजां ऐं इन बहाने मूंखां पंहिंजो महबूब पुछणु अचे सरकार फर

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: GFM 88
2: नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

ਹੱਥਾਂ ਚੋਗ ਚੁਗਣ ਥੀਆ ਕੈਦ ਪਰੋ ਕੇ ਸਾਵਣ ਦਾ ਉਹ ਬਿਸਮਿਲ ਸ਼ਾਹ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ

0: वज़ीर-ए-आज़म जे हुकूमत पिमसाने जे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ एक्शन शुरू। एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर समेत अहम उहिदेदार मुअतल। एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर राना इमरान सिकंदर छुराती तौर ते 120 ॾींहनि लाइ मुअतल। NICH इस्लामाबाद जे चीफ एग्ज़ीक्यूटिव आफिसर डॉक्टर मोहम्मद सलमान जो ख़िदमतूं पिम्स हवाले। डेपूटेशन ते एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स मुक़ररु। जॉइंट एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर चौधरी वारिस अली ऐं हेड ऑफ गायनी डॉक्टर नौशीला अमजद। डिप्टी एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मुतायर शाह ऐं सीनियर रजिस्ट्रार गायनी डॉक्टर निगार नवाज। एसोसिएट प्रोफेसर पीडा थ्रेक्स डॉक्टर सादिया रियाज ऐं असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी मोहम्मद उस्मान बि मुअतल। चार्ज नर्स नसरीन ऐं लेडी सिक्योरिटी स्टाफ मारिया खे फौरी तौर ते पिम्स जे एडमिन पोल में रिपोर्ट करण जूं हिदायतूं। डॉक्टर नुज़रत यासमीन पिम्स जे चिल्ड्रन वार्ड जे जॉइंट एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर मुक़ररु। डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन खे जॉइंट एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर जी चार्ज ॾिनी वई। डॉक्टर शुमैला हेड ऑफ गायनी मुक़ररु। ईरानी सदर चयो आहे त याददाश्त इस्लामाबाद नामे ते अमल दरामद सां ॾुखियाइनि ते कंट्रोल करे सघे थो। मुआहिदे ते अमल करणु अमरीका ऐं इसराइल खे ख़िते में अदम इस्तहकाम पैदा करण सां रोके सघे थो। ईरान जंग नथो चाहे, नई धमकियुनि ऐं दॿाउ सबबु झुकंदो। कंहिं बि जारियत जो पूरी ताक़त सां जवाबु ॾींदासीं। आलमी बिरादरी ख़िते में शिकतान घटाइण में किरदारु अदा करे। नोन इलाक़ाई मुआहिदनि ऐं इंतिज़ामनि सां पाड़ेसरी मुस्लिम मुल्कनि जो पंहिंजे सलाहियतुनि ते भाण जी शुरूआति थी चुकी आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालीबाब चयो आहे त इलाक़ाई सिक्योरिटी मुस्लिम मुल्कनि विच में सहकार ऐं ख़्वाह जे बुनियाद ते थियणु घुरिजे। मुस्लिम पाड़ेसरीनि खे दुश्मननि बदिरां सहकार ऐं भाईचारो इख़्तियारु करणो घुरिजे। इफ्तिखार गिलानीअ खे आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म बणाइण पार्टी क़यादत ऐं नवाज़ शरीफ़ जो फ़ैसिलो। वज़ीर आज़म जे मशीर राणा सना अला चयो आहे त इफ्तिखार गिलानीअ खे वज़ीर आज़म बणाइण में कंहिंसां नाइंसाफ़ी न आहे थी। आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म चूंडण पार्टीअ लाइ ॾुखियो फ़ैसिलो ज़रूरु हो, पर पार्टी क़यादत हिन मामले में कंहिंसां नाइंसाफ़ी न कई आहे। उॿावड़ो भरिसां हथियारबंदनि जी फायरिंग में नौजवान क़तल। ॻोठ लांगो में हथियारबंदनि फायरिंग करे ॿनीअ ते कमु कंदड़ लियाकत मल खे क़तल करे छॾियो। लाश ज़रूरी कारवाई बदवार सां हवाले। रहीम यार खान में पुलिस पारां मुक़ाबले में ॿडुआरी मारण जी दावा। पुलिस मूजिबि रहीम यार खान जे खानपुर में काइनात बीबीअ जे क़तल केस में नामज़द जवाबदारनि जी मौजूदगीअ जे इतलाह ते छापो हयो त जवाबदारनि फायरिंग कई। पुलिस जी जवाबी फायरिंग सबबि जवाबदार हसन ऐं अला ॾिठो जमाली मारिजी विया। ऐं नेपाल आयल बोट जे नतीजे में फोतियुनि जो अंगु वधी 734 थी वियो। 2000 खां वधीक माण्हू अञा बि गुम। तिब्बत में बि 7 ॼणनि जे फोत थियण जी तसदीक। 554 बदस्तूर गुम। भारत बि नेपाल में 320 भारतीय शहरनि जे गुम हुअण जी तसदीक करे छॾी। नेपाली इख़्तियारनि मूजिबि गुम थियल माण्हुनि जी ॻोल्हा वारो सिलसिलो जारी आहे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में बे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।

वक्त हालतूं आए वाकया मुसलसल तब्दील थी दा रहन था मुस्तकिल हो जे थी सिर्फ तब्दील हर पल तब्दील थी नर वाकयन जा नवा पहलू वसी आए गहरो नुक्ता नजर सिर्फ इनसाइड विद नाजिया मीर साहब।

0: पाकिस्तानी सियासत जो बेड़ो वफाक जो साहिल कौमी धारा मुल्की मईशत जो घुमंदड़ फिरंदड़ थी थो सूबाई असेंबलियुनि खां आला ऐवाननि ताईं पावर कॉरिडोर में छा फैसला थी रहा आहिनि असांजी ज़रात सनत ऐं असांजी अफरादी कुवत असां ठाहींदासीं मज़बूत पाकिस्तान इक़्तिसादी बहराननि जी आड़ में जनम वठी रहिया आहिनि मुआशी तरक़ी जा ख़्वाब सियासतदाननि जी चाल छा आहे ब्यूरोक्रेसी जो हाल छा आहे छा आलमी मंज़रनामो तब्दील थी रहियो आहे जॾहिं ख़बरूं सुर्खियूं बणिजी वेंदियूं आहिनि तबसरनि ऐं तज़ियनि मां निकिरंदा आहिनि सोच जा नवां रुख हिकु आम पाकिस्तानी जे सवाल जो असां बणजंदासीं आवाज़ आउं आहियां जी एम जमाली ऐं आवां ॾिसंदा फ्रंट पेज विद जी एम जमाली सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ के टी एन न्यूज़ ते
1: अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन के टी एन न्यूज़ में भली कार आहियां आमिर मैसर बुलेटिन जी शुरूआत में ख़बर शामिल कंदा हलां त वज़ीर आज़म जे हुकूमत पिम्साने जे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ एक्शन शुरू थी वियो आहे पिम्स इस्पताल जे एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर समेत अठ अहम उहिदेदारनि खे मुअतल कयो वियो आहे एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर राणा इमरान सिकंदर खे 120 ॾींहनि लाइ मुअतल कयो वियो आहे जॾहिं त डॉक्टर मोहम्मद सलमान डेप्यूटेशन ते पिम्स इस्पताल जो एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर मुक़ररु कयो वियो आहे जॉइंट एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर चौधरी वारिस अली रज़ा ऐं हेड ऑफ गायनी डॉक्टर नौशीला बि मुअतल आहे जॾहिं त डिप्टी एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मुताहिर शाह ऐं डॉक्टर निगार नवाज़ बि मुअतल ख़बर शामिल कंदा हलां त वज़ीर आज़म जे हुकूमत पिम्साने जे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ एक्शन शुरू थी वियो आहे पिम्स इस्पताल जे एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर समेत अठनि अहम उहिदेदारनि खे मुअतल कयो वियो आहे एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर राणा इमरान सिकंदर 120 ॾींहनि लाइ मुअतल कयो वियो आहे जॾहिं त डॉक्टर मोहम्मद सलमान डेप्यूटेशन ते पिम्स इस्पताल जो एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर मुक़ररु कयो वियो आहे जॉइंट एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर चौधरी वारिस अली रज़ा ऐं हेड ऑफ गायनी डॉक्टर नौशीला खे मुअतल कयो वियो आहे जॾहिं त डिप्टी एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मुताहिर शाह ऐं डॉक्टर निगार नवाज़ खे बि मुअतल कयो वियो आहे ख़बर शामिल कंदा त इस्लामाबाद यादाश नामे ते अमल दरामद सां ॾुखियाईनि ते कंट्रोल करे सघे थो अमरीका ऐं इसराइल खे खिते में अदम इस्तेहकाम पैदा करण सां रोके सघे थो ईरानी सदर वधीक चयो आहे त ईरान जंग नथो चाहे नई धमकी
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे ईअं असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर इहो सबबु न बणंदो
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो जी कैसे हैं, सबक सलाम मेरा आपको बहुत चाहिए। तो जी कैसे हैं और कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे किस किस ने ज्वाइन कर लिया है? और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि आज है इतवार का दिन, जैसा कि हम लोग पूरा कर रहे होते हैं 7 दिन वेट, सिर्फ एक इतवार के आने का था कि आपकी और मेरी बात हो सके। जी आपकी प्यारी सी आवाज़ के साथ, अपनी प्यारी सी आवाज़ के साथ आपके साथ मौजूद हैं आज जैसा एक बार फिर मौजूद हैं 2 घंटे के लिए आपके साथ देने वाली हैं, आपसे बातें चलने वाली हैं और आपकी सारी परेशानियों को सुन के उनका हल निकालने वाली हैं। ओके जी, तो जी सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आपने मुझे ज्वाइन कर लेना है। मुझे ज्वाइन करने के साथ आपने क्या करना है, सबसे पहले परेशान नहीं होना कि आपने मुझे टाइप कैसे करना है, मैसेज कैसे टाइप करना है, सेंड कैसे करना है, मुझे ज्वाइन कैसे करना है, मेरे सवाल को सुनना कैसे है। तो मैं आपको बताऊं कि आपने मुझे ज्वाइन करने के लिए आपने सबसे पहले परेशानी मेरा मोबाइल उठाना और टाइप करना 888 पे एस के आर लिख के अपना नाम और अपने प्यारे से शहर का नाम। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं और जो मुझे लाइव फेसबुक से सुनना चाहता है फेसबुक को ज्वाइन करने के लिए आपने फेसबुक को ऑन कर लेना है और वहां पर जाकर GFM88 सर्च करना। जैसे ही आपको मेरे नाम का फ्लैट दिख जाता है विदाजी सना के नाम से, तो आपने वहां पर जाकर मुझे कमेंट करना है और कमेंट करने के साथ साथ मुझे बताना है कि आप मुझे कहां से सुन रहे हैं और कब से सुन रहे हैं और मेरा शो कैसा लगता है आपको। जो मैं सवाल करूंगी उसका जवाब भी देना है और जवाब देने के साथ साथ आपने मुझे अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम भी जरूर बताना है, ताकि जो है ना अगर आपका जवाब ठीक होगा तो मैं आपका ऑटोमेटिक सॉन्ग प्ले हो जाएगा और अगर आपका जवाब ठीक नहीं होगा तो वो सॉन्ग माजर के साथ प्ले नहीं हो सकता। तो ऐसे ही है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आपने मुझे 12 बजे से पहले पहले ही जवाब देना होता है, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर देती हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ टाइम, ताकि आप लोग थोड़ा सोच ले समझ ले उसके बाद ही। तो अपनी तबीयत बताइएगा जरूर, आप लोग सारे के सारे कैसे हैं और कहाँ से सुन रहे हैं और कौन कौन अभी ड्राइविंग पर मौजूद है, ड्राइविंग पे FM कौन कौन सुन रहा है, जरा मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे साथ मौजूद कौन कौन है।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

खुश रहें और मेरा शो सुनते रहें और मुझे हमेशा ऐसे ज्वाइन करते रहें क्योंकि आप और मेरा साथ हमेशा के लिए हमेशा दो घंटे के लिए होता है। इतवार इतवार आप और मेरी बात होती है जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं। आओ बात करें मैं हम लोग साथ होते हैं ओनली ओनली ऑन सैटरडे संडे सॉरी संडे क्योंकि सैटरडे तो यार मेरे पास था एक लेकिन फिर मैंने कहा यार क्या करें थोड़ी बिजी होने की वजह से तो मैंने कहा संडे संडे ठीक है आप लोग सारी बातें जमा कर लो और क्योंकि फिर ऐसे होते हैं कि यार आप लोग सारी बातें अगर एक दिन में करते दूसरे दिन के लिए वो आप लोग कहते हो कि अभी कौन सी ऐसी बात बताएं तो जो मुझे ना पता चल जाए तो ऐसा कुछ नहीं है आपने सारी सारी सारी सारी जमा करके रख लेनी होती है और मुझे इतवार वाले दिन बतानी होती है। पूछूंगी तो सही में आप लोगों से ये तो ऐसा नहीं है और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले जो हमें ज्वाइन करते हैं मसरूर अहमद ने आज भी हमेशा की तरह सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया है और कहते हैं कि कराची से मसरूर अहमद आरजे सना जी अस्सलाम वालेकुम कैसी हो माशाल्लाह जबरदस्त शो एंड खूबसूरत आवाज एंड अंदाज थैंक यू सो मच मसरूर अहमद और यही आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप टाइमली मुझे ज्वाइन करते हैं और मेरे शो को सुनते हैं ऑफिस में हो घर पे हो जहाँ पर भी हो आप मुझे ज्वाइनली टाइमली करते हैं तो ऐसे ही आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब भी टाइमली दे देना है और अपने साथ में पसंदीदा सॉन्ग का नाम भी बता देना है क्योंकि आपके पसंदीदा सिंगर का सॉन्ग तो मैं वैसे ही प्ले करूंगी तो अगर आप सॉन्ग भी बता देंगे तो वेल एंड गुड हो जाएगा। तो जी यहाँ पर देख लेते हैं कि मेरा जो सवाल है कौन कौन रेडी बैठा है मेरे सवाल सुनने के लिए। ओके जी तो मैं अपना सवाल बताऊंगी और सवा बारह तक आप लोगों से इसका जवाब ले लूंगी। तो जी मेरा सवाल आप लोगों से ये कि आप लोग मुझे बताना है कि क्या आप बता सकते हैं कि हमारी नाक का साइज जो होता है नोज जो होती है हमारी तो वो हमारी बॉडी के किस हिस्से के बराबर होती है किस बॉडी पार्ट के बराबर होती है हमारी बॉडी में किस हिस्से के बराबर होती है। ओके तो जी आपने मुझे बताना है इसका जवाब सवा बारह तक सवा बारह तक अगर मैं आपसे जवाब लूंगी आपके सॉन्ग के नाम आएंगे अगर जवाब ठीक होगा तो आपका सॉन्ग प्ले भी तो करना है ना भाई मेरे सॉन्ग भी तो सुन ले। तो जी ये सवाल कर चुकी हूँ मैं आप लोगों से जिसने मेरा सवाल सुन लिया है तो जवाब देती नहीं सुनो तो सवाल रिपीट कर देती हूँ। सवाल मेरा ये कि आपको बताना है कि जो हमारी नोज है हमारी जो नाक का साइज है वो हमारे जिस्म के हमारी बॉडी के किस हिस्से के बराबर होता है तो जाइए पता लगाइए और मुझे बताइए। तो यहाँ पर सुनते हैं एक हम फैजाली की आवाज में खूबसूरत सा सॉन्ग क्योंकि जब तक हम इनकी आवाज में एक सॉन्ग नहीं सुनते तो हमारी सुबह नहीं होती। कहते हैं सॉन्ग को प्ले रहेगा मेरे साथ।

0: GA Sakra FM 88
1: Sakra अपना शहर अपना घर मोरो और मोरो की आवाज GA FM 88
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: जरा बहन,
4: जरा बात तो सुनो।
3: हटो पीछे, भागो।
5: अहमद, हटो वहां से।
6: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
7: अच्छन वारन खां परेशान आयो, पेश आहे आर्च क्रीम हेयर कलर। पंहिंजे पसंदीदा रंग सां पंहिंजो अंदाज बणायो वधीक दिलकश ऐं वधीक स्टाइलिश। पार्टी हुजे, ऑफिस हुजे या के खास मौके जी तयारी, हर लम्हे पंहिंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो आर्च क्रीम हेयर कलर सां। पंहिंजी शख्सियत में आणियो नओ रंग, नओ अंदाज ऐं नई ताज़गी। अॼु ई पंहिंजे वेझे स्टोर तां आर्च क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओ रंग। आर्च क्रीम हेयर कलर, हर रंग में खूबसूरती, हर अंदाज में एतमाद। जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GA FM 88 नेटवर्क ते।
8: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
9: GA FM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
8: GA FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

जी यहाँ पर सुन रहे थे हम लोग एक सॉन्ग वाइजल की आवाज में, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग था। और तो उनके सॉन्ग का सॉन्ग ना सुने उनकी आवाज में तो हमारी सुबह होती ही नहीं है। तो जी आज भी बिल्कुल ऐसा ही था कुछ। तो जी मैं इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो मेरा सवाल सवाल मैंने रिपीट आप लोगों से करना है, लेकिन इससे पहले जिसने सुन लिया है मेरा जवाब सवाल सॉरी और इसका जवाब देने के लिए तैयार है तो जी कमेंट करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आप लोग मुझे अपना सॉन्ग का फेवरेट सॉन्ग का नाम कोई भी बताते हैं तो अगर मैं प्ले नहीं कर पाती तो आप लोग बोलते कि आपने हमारा सॉन्ग प्ले नहीं किया। और अगले इतवार आने तक के लिए जब तक हम भूल भी जाते हैं और आप लोग नए सॉन्ग का नाम बता देते हो, तो इसलिए कह रही हूँ कि अभी से आप लोग मुझे कमेंट करके अपना सॉन्ग का नाम बता दें, साथ ही मेरे सवाल का जवाब भी बता दें ताकि आपका सॉन्ग टाइमली प्ले कर लूं। क्योंकि सिर्फ 15 मिनट बाद ही मैं आप लोगों से अपने सवाल का जवाब ले लूंगी और उसके बाद मैं अपने पसंद का सॉन्ग चलाना शुरू कर दूंगी। फिर नहीं कहिएगा कि भाई आपने मेरे पसंद का सॉन्ग नहीं चलाया, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके फेवरेट सॉन्ग प्ले हो जाते हैं। शर्त यही है कि अगर आपका जवाब ठीक होगा।

इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आप लोग मुझे बताएं कि यार गर्मी तो बहुत है और गर्मी में ज्यादा जो हम लोग एसी यूज कर रहे होते हैं, एसी यार आप लोग इसी वजह से पता है क्या नुकसानात होते हैं, हर चीज का फायदा भी है तो नुकसान भी है। अगर आप सारा सारा दिन एसी में बैठे रहते हो तो आप गर्मी में जाते हो तो आपका काम करने का दिल नहीं कर रहा होता, क्योंकि आपकी बॉडी कह दी होती है कि यार मैंने जब एक ठंडक अपने ऊपर ऑब्जर्व की है उसके बाद यार मैं क्यों जाऊँ बाहर गर्मी में काम करूँ, मेरी बॉडी इजाजत नहीं दे रही होती, तो ऐसे ही होता है। लेकिन जो अल्लाह ताला की हवा चल रही होती है बाहर, चाहे गर्मी हो या कुछ भी हो, तो अगर आपको धूप में भी अल्लाह ताला की हवा मिल रही है तो आप वो जाके लिया करें बनिस्बत इस एसी के। हर एक जरूरत के अलावा आप घर से बाहर भी मत जाया करें, और घर में रहने का मकसद ये भी नहीं कि सारा सारा दिन आप एसी में रहा करें, आप पंखे में बैठा करें। और जिसके घर में वैसे कुदरती हवा आ रही होती तो वो तो एक बात ही अलग है भाई, कुदरती की हवा की बात वाकई बहुत अलग है। क्योंकि जब आप लोगों को पता चलता है कि जो बाहर की हवा है जो अल्लाह ताला ने चलाई हुई होती है वो आपकी बॉडी को फ्रेश करती है और ताज़ा रखती है, बिल्कुल आप काम करने का दिल भी करता है आपका और एक्टिव रहता है इंसान। लेकिन जो एसी होती है, एसी की ठंडक होती है, वो मसनूई होती है, इंसानों की बनाई हुई होती है, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग जो अगर काम करने का दिल भी कर रहा था तो एसी में जाने के बाद आपका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। ये आप लोग जाके आजमा भी सकते हैं और अगले सवाल का आप लोग मुझे बता भी सकते हैं। ऐसे ही एक सवाल भी है कि आप लोग जाएंगे उसका ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे और अगले सवाल का मुझे जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही कि जो अल्लाह ताला की जो हवा है हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें जाके बैठते हैं, खेलते हैं, फिरते हैं, जो भी है, तो वो हमें ताज़ा रखती है, कभी थकाती नहीं है और मायूस नहीं होने देती, जो भी है। लेकिन इसके अलावा अगर आप एसी में बैठ जाते हो और एसी में बैठने के बाद आपको काम करने का भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता, तो ये चीजें आप लोग नोट भी करिएगा, मुझे बताइएगा भी, क्योंकि मैंने नोट किया है, इसलिए मैंने आपको बताइए कि इस चीज से बचने के लिए आप लोग क्या करना है। एसी को कम यूज करना है, लेकिन बिना फालतू घर से बाहर नहीं जाना। घर में रहने का मकसद ये भी नहीं कि आप एसी में बैठना, पंखे को यूज करें, पंखे के नीचे बैठे और साथ में अलग अलग जो हवा आती है आप विंडोज खोलें, दरवाजा खोलें, वहां की हवा इस्तेमाल करें। यार आप लोगों को पता चलेगा कि जिंदगी असल है क्या, गर्मी है तो क्या हुआ, अल्लाह ने हवा भी तो चलाई होती है ना, नहीं चल रही होती आप ठीक है बैठ जाओ, ये भी नहीं कि एसी में ना बैठो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको कम कर देना है तो आपकी सेहत वगैरह जो भी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ये मेरी ऑब्जर्व की भी बात है और क्या बोलते हैं अप्लाई की भी बात है अपने ऊपर, तो मैंने ये चीज़ करके देखी।

हमारे पास एक और सॉन्ग है जो कि अलन फकीर का सॉन्ग हमारे पास है, जो कि रेमिक्स सॉन्ग है, सूफी वाइब जिसमें आती है। तो हम लोग इतना सारा सॉन्ग सुने थे, सूफी वाइब भी हम लोग सुनेंगे और तेरे इश्क में जो भी, ये हम लोग सुनते हैं अलन फकीर की आवाज में। तो जी मैं करती हूँ प्ले और इसको प्ले करते हैं। प्ले करने के बाद करेंगे आपके लोगों का सवाल का जवाब लूंगे आप लोगों से। ओके जी, तो सुनते हैं यहाँ पर, रहिएगा मेरे साथ, करें मेरे साथ एंजॉय सूफी वाइब।

दुखीअ में गाॾी बारूदी सिरिंग सां टकराइजी वई, टे ॿार फोत, हिकु ज़ख़्मी। SSP जो चवणु आहे त दुखीअ जे इलाइक़े लूनी कली बख़्तियार में गाॾी बारूदी सिरिंग सां टकराइजण सबबि टे ॿार फोत थी विया, जॾहिं त हिकु ज़ख़्मी थी पियो। इतलाह ते पुलिस इलाइक़े खे घेरे में आणे छॾियो, सर्च ऑपरेशन शुरू करे छॾियो। ईरानी सदर चयो आहे त इस्लामाबाद यादाश नामे ते अमल दरामद सां ॾुखियाइनि ते कंट्रोल करे सघिजे थो। मुआदे ते अमल करण सां अमरीका ऐं इसराइल खे खिते में अदम इस्तेहकाम पैदा करण सां रोके सघिजे थो। ईरान जंग नथो चाहे, नई धमकियुनि ऐं दॿाउ सबबि झुकंदो, कंहिं बि जारियत जो पूरी ताक़त सां जवाब ॾींदासीं। आलमी बिरादरी खिते में शिकतान घटाइण में किरदारु अदा करे। नवनि इलाक़ाई मुआदनि ऐं इंतिज़ाम सां पाड़ेसरी मुस्लिम मुल्कनि जो पंहिंजे सलाहियतुनि ते भाण जी शुरूआत थी चुकी आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालिबाब चयो आहे त इलाक़ाई सिक्योरिटी मुस्लिम मुल्कनि विच में सहकार ऐं ख़्वाह जी बुनियाद ते थियणु घुरिजे। मुस्लिम पाड़ेसरीनि खे दुश्मननि बदिरां सहकार ऐं भाईचारो इख़्तियारु करणु घुरिजे। इफ्तिखार गिलानीअ खे आज़ादु कश्मीर जो वज़ीर आज़म बणाइण पार्टी क़यादत ऐं नवाज़ शरीफ़ जो फ़ैसिलो। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाला चयो त इफ्तिखार गिलानी खे वज़ीर आज़म में कंहिं सां नाइंसाफ़ी न आहे थी। आज़ादु कश्मीर जो वज़ीर आज़म चूंडण पार्टीअ लाइ ॾुखियो फ़ैसिलो ज़रूरु हो, पर पार्टी क़यादत हिन मामले में कंहिं सां नाइंसाफ़ी न कई आहे। उॿावड़ो भरिसां हथियारबंदनि जी फायरिंग में नौजवान क़तल, ॻोठ लांगो में हथियारबंदनि फायरिंग करे ॿनीअ ते कमु कंदड़ लियाकत मल खे क़तल करे छॾियो। लाश ज़रूरी कार्यवाही बाद वारसनि हवाले। रहीम यार खान में पुलिस पारां मुबैना मुक़ाबले में ॿ ॾुहारी मारण जी दावा। पुलिस मूजिबि रहीम यार खान जे खानपुर में काइनात बीबीअ जे क़तल केस में नामज़द जवाबदारनि जी मौजूदगीअ जे इतलाह ते छापो आयो त जवाबदारनि फायरिंग करे ॾिनी। पुलिस जी जवाबी फायरिंग सबबि जवाबदार हसनैन ऐं अलह ॾितो जमाली मारिजी विया।

0: मटियारी भरसां क़ौमी शाहराह ते ट्रक ऐं ट्रालर जे टकर में ॿ ॼणा फोत, चार ॼणा ज़ख़्मी। हादसे जे नतीजे में सजाद अली समेत ॿ ॼणा फोत थी विया। दिल मुराद ऐं मोहम्मद अब्बास समेत चार ॼणा ज़ख़्मी। फोतनि ऐं ज़ख़्मियुनि खे इस्पताल मुंतकिल कयो वियो। अठ अठ मोरीअ में आबाद घरनि जो वाटर कोर्स बंदि करण ख़िलाफ़ु एहतजाजी मुज़ाहिरो। छोटकी गुजरावा जे आबाद घरनि वाटर कोर्स बंदि करण ख़िलाफ़ु एहतजाज कयो। आबाद घरनि चयो आहे त आबपाशी खातो रिश्वत न ॾियण तां वाटर कोर्स बंदि कराए छॾियो आहे। 4 लख रुपया रिश्वत घुरी रहियो आहे। वाटर कोर्स खोलाए परेशानियुनि खे ख़तमु कयो वञे। गाज़ी अहमद जे शौकत कॉलोनीअ में रहवासियुनि जो गंदे पाणी निकाल न कराइण ख़िलाफ़ु एहतजाजी मुज़ाहिरो। मुज़ाहिरीन चयो त नालनि जी सफ़ाई न थियण करे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जनम वरितो आहे। नालनि जो गंदो पाणी घरनि ऐं घिटियुनि में पीअण सबबु मछरनि जो आज़ार वधी वियो आहे। गंदो पाणी फौरी तौर ते निकाल करायो वञे। ऐं नेपाल आयल बोट जे नतीजे में फोतियुनि जो अंगु वधी 734 थी वियो। 2000 खां वधीक माण्हू अञा बि गुम। तिब्बत में बि 7 ॼणनि जी फोत थियण जी तसदीक। 554 बदस्तूर गुम। भारत बि नेपाल में 320 भारतीय शहरनि जे गुम हुअण जी तसदीक करे छॾी। नेपाली इख़्तियारनि मूजिबि गुम थियल माण्हुनि जी ॻोल्हा वारो सिलसिलो जारी आहे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखन जे मुकाबले में ते ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण होंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: जी एफ एम 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के जी शमन अली मिराली की आवाज में आप मुझे सॉन्ग प्ले कर दे दिल हुई सच्ची। ओके जी जरूर हम लोग आपका सॉन्ग जरूर प्ले करेंगे अगर आपको जवाब ठीक है तो इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी चलिए यहाँ पर एक और मेरे पास सॉन्ग है तो क्यों ना मैं वो सॉन्ग प्ले करती हूँ और सुनते हैं। अच्छा ये तो सॉन्ग है ये है नसीबो लाल की आवाज़ मेरी पसंद का सॉन्ग है इतना मैंने कभी नहीं है लेकिन मैं आपको पता है कोई भी न्यू सॉन्ग होता है तो मैं शाहरुख के साथ सुनती हूँ और जय भी आपके साथ ही आता है तो ठीक है तो यहाँ पर हम प्ले करते हैं और सुनते हैं सॉन्ग को।

तो जी यहाँ पर सुन रहे थे हम लोग नसीबोलाल की आवाज़ में था आया था यार। तो जी यकीनन आप लोगों ने भी सुना होगा और यकीनन आप लोगों को भी अच्छा ही लगा होगा अगर आपको उसका मतलब पता है तो, क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर ये जो है अगर आप कोई भी सॉन्ग सुनते तो आप लोगों के साथ सुनते, कोई भी ऐसा सॉन्ग नहीं है जो आप लोगों के बिना मैंने सुना हो, कोई भी फर्स्ट टाइम ऐसा सॉन्ग होता है तो हमेशा आप लोगों के लिए ही आप लोगों के साथ ही मैं सुनना करती हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अभी जो है अभी हमें किसने जवाब दिया है। अच्छा अब्दुल रजाक हमें कहते हैं कि सवाल का जवाब है सॉन्ग फौजिया साइज फिंगर। अच्छा सवाल का जवाब है। और फौजिया सुमरो तो कि वसर लाए जानी मुखे जमानो अन्या लगन दो। अच्छा कहते हैं फौजिया सुमरो का ये सॉन्ग आप प्ले करते हैं जी ज़रूर। और आपने जो मुझे जवाब दिया है वो कहते हैं कि आपके हाथ के जो उंगलियाँ होती है उसके बराबर आपके नोज़ का साइज होता है। ओके जी ठीक है, आपका सॉन्ग भी ज़रूर

इसके अलावा जिसने मेरे साथ शो को ज्वाइन कर लिया है और मेरे पेज को अभी तक लाइक नहीं किया, कॉमेंट नहीं किया और शेयर नहीं किया, तो जाके पहले से जाके कमेंट करें, शेयर करें और मुझे बताएंगे, मैं सब कर मौजूद ही। अच्छा, जिसे मैंने सवाल नहीं सुना और सवाल मेरा यही है कि जिसे मुझे अभी ज्वाइन किया, सवाल मैं आपको रिपीट कर दूं कि सवाल मेरा ये कि आप लोगों ने बताना है कि जो हमारी नाक या जो हमारी नोज है उसका साइज हमारी बॉडी पार्ट के मतलब हमारे जिस्म के कौन से हिस्से के बराबर होता है, जाके आपने जल्दी से बताना है मुझे ताकि मैं आपके पसंद का सॉन्ग प्ले कर सकूं, ताकि आप भी सुने और आपके साथ मैं भी सुने, मेरे साथ सारे लिस्टनर सारे मिलकर सुन लें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सॉन्ग को भी सारे लोग इंजॉय करें तो जाके जल्दी से जवाब दीजिए और अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम भी साथ में टाइप करके बताइए मुझे, तो यहाँ पर मैं कर दूंगी प्ले क्योंकि टाइम वैसे ही है हमारे पास, सिर्फ आधा घंटा रहता है।

0: जी जैसे कि अगर मेरे सवाल को सुन लिया होगा और जवाब भी आप लोगों के पास आ गया होगा तो यहाँ पर चाहूंगी आप लोग रेडी हैं, लेकिन अभी हम जाएंगे छोटे से छोटे कमर्शियल ब्रेक की तरफ और जैसे ही ब्रेक से जाएंगे वापस आएंगे, वापस आके करूंगी मैं आपके सॉन्ग को प्ले और तब तक आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब दे देना है और चाय शाय का कप उठाना है और पीना है। मुझे भी साथ में बताना है कि आप लोग चाय भी पी रहे हैं, कार भी चला रहे हैं, घर में बैठे हुए सो रहे हैं, ऑफिस है या किसी और काम से बाहर गए हुए हैं और मेरे FM को सुन रहे हैं, तो ये जरूर बताने की किस तरीके से आप लोग मेरे FM को सुन रहे हैं। अच्छा, जो मेरा सवाल था कि आपने मेरे पर्सनैलिटी के बारे में बताना था कि आप लोग किस क्वालिटी की वजह से मुझे ज्वाइन करते हैं, सुनते हैं और ऐसा क्या चीज़ें जो अच्छी लगती है आपको, तो आप मुझे जाके बताना है। यहाँ पर चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरह।
1: It's 12:30 PM. This sound check is brought to you. It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए, आर्श ब्यूटी क्रीम।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असां खे साईं, पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे, त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए।
5: अजरक के रंगों से रंगी,
6: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
6: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यार आपके साथ बहुत अच्छा लगता है बात करना और आप लोगों से एक्टिविटी जानना और आप लोगों को अपनी बात बताना, अपने दिल की बात बताना, ये चीज़ें अच्छी लगती है यार। बंदे की तबीयत वैसे ठीक ना हो, आप लोगों से बात करें, किसी से शेयर करें, तो वो वैसे ही आधा मरीज जो है वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी और आज ऐसा ही हुआ है। बहुत अच्छा लगा है कि आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया और मैंने जिस तरीके से मैं आप लोगों का वेट कर रही होती हूँ, ऐसे आप लोग भी मेरा वेट कर रहे होते हैं। और उम्मीद यही है कि नेक्स्ट इतवार भी मेरे आने से पहले आप लोग मेरा इंतजार करेंगे और मेरे साथ मजहब के सॉन्ग भी सुनेंगे, मेरा मजहब का सवाल भी सुनेंगे, उसका जवाब भी देंगे अपने पसंदीदा सॉन्ग के नाम के साथ। और ज्वाइन करने के लिए तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती है, तो आपने ज्वाइन करने के लिए अपना नंबर लिख लेना है 8881 पे। आप इसके आर लिख के आप मुझे अपने नाम के साथ और प्यार से शेयर के नाम के साथ आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ, तो ऐसे आप लोग मेरा वेट कर रहे होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है यार कि मेरा यहाँ पर आना जो है ना वो पूरा हो जाता है, एक अधूरापन नहीं होता कि यार मैं यहाँ पर आई और आप लोग मेरे साथ मौजूद नहीं है। तो यही एक सबसे बड़ी खुशी की बात होती है मेरे लिए। तो आप लोगों के साथ भी यही होता होगा कि आपको इतने प्यार से आरजे आवाज़ की आवाज़ सुनने को मिलती है, आरजे आपसे बात कर रही होती है और आओ बात करें में जो हम लोग साथ होते हैं पूरे पूरे 2 घंटे के लिए। यहाँ पर टाइम होता है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम, तो यहाँ पर लास्ट में मैं एक सॉन्ग लेकर जाऊँगी, मेरी जिंदगी है तू, तो कौन है आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी है तू, तो ये सॉन्ग मैं करती जाऊँगी प्ले और आप लोग मुझे बताइएगा कि आपकी जिंदगी कौन है।

दादू भरसा चांडिया बिरादरी के बिन धुरन में जेड़ो बिन भाइरन समेत पंज जणा कतल जडे त वाटाड़ू औरत जख्मी कच्चे के गोट दानो चांडियो में चांडिया बिरादरी के बिन धुरन विच में जेड़ो थी पियो गोली लगण सबब भाइर दीदार गुलबार चांडियो थड़े ते कतल वतनी चांडियो बचल बीमार जी वया पुलिस मूजिब चारई लाश दादू अस्पताल आंदा विया धुरन में चैन कलाकन का फायरिंग की डेवट जो सिलसिलो हलंदड़ दादू मोरो रोड से ट्रैफिक मुतासर इलाके में शिकतान सबब खौफ और हिरास पकड़ियल ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के विच ओभर के मुल्क का अमरीका और इसराइल खिलाफ मुतहद थियण की अपील ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई पांजे बयान में चयो आए त इस्लामी कौमन के मसले जो हल कलमे के इताद दोस्ती भला के राह में सहकार करण आए दुश्मन सजी दुनिया में मुसलमानन में वेशा पैदा करण की कोशिश कर रो है विच ओभर जहा मुल्क पांजे हकीकी दुश्मन के सुणे उन मनसूबा समझन और मुकाबलो कन वजीर आजम के हुक्म से पिम्स थाने के जिम्मेवार खिलाफ एक्शन शुरू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत आम अहदेदार मुअतल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर राना इमरान सिकंदर शुरुआती तौर से 120 दिन मुअतल एनआईसीएच इस्लामाबाद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद सलमान जो खिदमतू पिम्स हवाले डेपुटेशन से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स मुकर्रर ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चौधरी वारिस अली रजा हेड ऑफ गायनी वार्ड डॉक्टर नौशीला अमजद डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर ताहिरा शाह सीनियर रजिस्ट्रार गायनी वार्ड निगार नवाज एसोसिएट प्रोफेसर पीडा डॉक्टर सादिया रिजिया असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी मोहम्मद उस्मान बिन मोतल चार्ज नर्स नसरीन लेडी सिक्योरिटी स्टाफ मारिया के फौरी तौर से पिम्स के एडमिन पोल में रिपोर्ट करण जो हिदायतूँ डॉक्टर नुजत यासमीन पिम्स के चिल्ड्रन वार्डन के ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तौर मुकर्रर डॉक्टर अल्ताफ हुसैन के ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज दिनी वही डॉक्टर शुमैला हेड ऑफ गायनी वार्ड मुकर्रर पाकिस्तान तुर्की और सऊदी गडियल सलामती दिफा लाए मुतहद हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ जो तुर्किया के सदर अवाम के योम फतह के मौके से पैगाम वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो त 30 अगस्त गाजी मुस्तफा कमाल तुर्क की क्यादत में तारीखी फतह की याद दियारे तो पाकिस्तान तुर्की अवाम से गुड जुरत और कौमी इज्जत के फख्र जो मीरास से डेटा पेश क्यों था

वजीर आजम शहबाज शरीफ जाती उमरा पहुंची वो जरियन जो चवण है तो वजीर आजम शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मुलाकात कई। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल से गाल

टकराए जी वही टे भार फोत एक जख्मी एस एस पी चवे तो दुखी के इलाके लून कली बख्तियार में गाड़ी बारूद की सिरिंग से टकराजन सबब टे भार फोत जडे तो एक जनों जख्मी थी पे इतला पुलिस इलाके के घेरे में हाने सर्च ऑपरेशन शुरू कर छो है। ईरानी सदर है तो इस्लामाबाद यादाश्त नामे अमल दरामद से डुखन कंट्रोल कर सके तो मुआदे से अमल करण से अमरीका इसराइल के खिते में अदम इस्तकाम पैदा करण से रोके सके तो ईरान जंग नथो चाहे नई धमकिन दबा सबब झुक कें भी जारियत जो पूरी ताकत से जवाब दींदी आलमी बिरादरी खिते में शिकतान घटाने में किरदार अदा करें। नवन इलाकई मामलन इंतजाम से पाड़ेसरी मुस्लिम मुल्कन जो पांजे सलाहतन से भाण की शुरुआत थी चुकी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाब चया है तो इलाकई सिक्योरिटी मुस्लिम मुल्कन विच में सहकार ए ख्वाह के बुनियाद थियण घुर्जे। मुस्लिम पाड़ेसरी के दुश्मन बदरा सहकार ए भाईचारो इख्तियार करण घुर्जे। इफ्तिकार गिलानी के आजाद कश्मीर जो वजीर आजम बनाने पार्टी क्यादत नवाज शरीफ जो फैसलो वजीर आजम के सलाहकार राणा सना लाचो तो इफ्तिकार गिलानी के वजीर आजम बनाने में कैंसा ना इंसाफी ना थी। आजाद कश्मीर जो वजीर आजम चूंडन पार्टी लाए दुखियो फैसलो जरूर हो पर पार्टी क्यादत इन मामले में कैंसा ना इंसाफी न कई है। उबावड़ो भरसा हथियारबंदन की फायरिंग में नौजवान कतल गोठ लांगो में हथियारबंदन फायरिंग करे बनिये ते कम कंदड़ लियाकत मलक के कतल करे छो लाश जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले। रहीम यार खान में पुलिस पारा मुकाबले में बडुहारी मारण की दावा पुलिस मूजिब रहीम यार खान के खानपुर में कायनात बीबी के कतल केस में नामजद जवाबदार की मौजूदगी के इतलाते छापों तो जवाबदार फायरिंग कई पुलिस की जवाबी फायरिंग सबब जवाबदार हसनैन अला डितो जमाली मार वाया। मटियारी भरसा कौमी शाहराह से ट्रक ए ट्रालर के टक्कर में बजना फोत चार जना जख्मी हादसे के नतीजे में सजाद अली समेत बजना फोत थी वया दिल मुराद मोहम्मद अब्बास समेत चार जना जख्मी फोतिन जख्मी के अस्पताल मुंतकिल कयो वयो। अठ अठ मोरी में आबाद घर जो वाटर कोर्स बंद करने खिलाफ एहतजाज छोटकी वा जे आबाद घर वाटर कोर्स बंद करने खिलाफ एहतजाज किया। आबाद घर आपपाशी खातिर रिश्वत न दियण ता वाटर कोर्स बंद कर छो है चार लख रुपया रिश्वत घुरी पी वे वाटर कोर्स खोल रहा है परेशानी खत्म कई वजन। काजी अहमद के शौकत कॉलोनी के रहवासियों जो गंदो पानी निकाल न कराने खिलाफ एहतजाज मुजाहरीन तो नालन की सफाई न थियण कर मुख्तलिफ बीमारियों जन्म वरत है। नालन जो गंदो पानी घर गिटन में बीह सब मच्छर जो आजार वधी वो है फौरी तौर से गंदो पानी निकाल कराया वे। नेपाल आयल बोर्ड के नतीजे में फोतिन जो अंग वधी 724 थी वो 2000 का मानू अजा भी गुम तिब्बत में भी सत जन की फोत थियण की तस्दीक 556 बदस्तूर गुम भारत में नेपाल में 320 भारतीय शहर के गुम करण की तस्दीक कर छी। नेपाली इख्तियार मूजिब गुम थियल मानू की गोलावारो सिलसिलो जारी है।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में ज़बरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
1: स्किन केयर के लिए दुनिया भर में ख़वातीन का अव्वलीन इंतखाब फाइज़ा ब्यूटी क्रीम। इसमें शामिल अज्ज़ा आपकी स्किन को रखे हेल्थी, खूबसूरत और जवान। फाइज़ा ब्यूटी क्रीम।

वक्त हालतूं आए वाकया मुसलसल तब्दील थी दा रहन था मुस्तकिल हो जाए थी सिर्फ तब्दील हर पल तब्दील थी दर वाकयन जा नवा पहलू वसी आए गहरो नुक्ता नजर सिर्फ इनसाइड विद नाजिया मीर साहब।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुझो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तो आसान जवाब यो आ ये बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आयन। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है जरूरी आए। असा जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जो उम्र ताई जितरा भी बार आयन उनन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दादू भरसा चांडिया बिरादरी के बिन धिरन में जेड़ो बिन भाइरन समेत अठ जणा कतल चांडिया बिरादरी के बिन धिरन में जेड़े दौरान गोलियों लगण सबब भाइर दीदार ऐं गुलबार चांडियो कतल वतनी बचल उर्फ बच्चू मंजूर ऐं आजम चांडियो समेत अठ जणा मारिजी विया छहनि ॼणनि जा लाश इस्पताल आंदा विया पुलिस जा वॾा अटाला वाके वारे हंधि पहुची विया सॼे ॻोठ खे कड़ो चाढ़े वियो इलाइक़े में खौफ़ ऐं हिरास पखियल ईरानी सुप्रीम लीडर जे विच ओभर जे मुल्कनि खां अमरीका ऐं इसराइल ख़िलाफ़ु मुतहिद थियण जी अपील ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनेई पंहिंजे बयान में चयो आहे त इस्लामी क़ौमुनि जे मसइले जो हल कलमे जे ताज़ दोस्ती ऐं भलाईअ जे राह में सहकार करणु आहे। दुश्मन सॼी दुनिया जे मुसलमाननि में वेछा पैदा करण जी कोशिशि करे रहियो आहे। विच ओभर जा मुल्क पंहिंजे हक़ीक़ी दुश्मन खे सुञाणे हुननि जा मनसूबा सम्झनि ऐं मुक़ाबिलो कनि। वज़ीर आज़म जे हुकुम ते पिम्स साने जे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ु एक्शन शुरू। एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर समेत अहम उहिदेदार मुअतल। एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर राना इमरान सिकंदर शुरूआती तौर 120 ॾींहनि लाइ मुअतल। NICH इस्लामाबाद जे चीफ एग्ज़ीक्यूटिव आफिसर डॉक्टर मोहम्मद सलमान जो ख़िदमतूं पिम्स हवाले। डेपूटेशन ते एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स मुक़ररु। जॉइंट एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर चौधरी वारिस अली रज़ा ऐं हेड ऑफ गायनी डॉक्टर नौशीला अमजद। डिप्टी एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मुतायर शाह ऐं सीनियर रजिस्ट्रार गानी डॉक्टर निगार नवाज़। एसोसिएट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स डॉक्टर सहदया रज़िया ऐं असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी मोहम्मद उस्मान बि मुअतल। चार्ज नर्स नसरीन लेडी सिक्योरिटी स्टाफ मारिया खे फौरी तौर ते पिम्स जे एडमिन पोल में रिपोर्ट करण जूं हिदायतूं। डॉक्टर नुज़रत यासमिन पिम्स जे चिल्ड्रन वालडरन जे चीफ एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर मुक़ररु। डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन खे जॉइंट एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर जी चार्ज ॾिनी वई। डॉक्टर शुमाइला हेड ऑफ गायनी मुक़ररु।

राज्यपाल ऐं मुतहद आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो तुर्किया जे सदर ऐं अवाम खे योम फतह जे मौक़े ते पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त 30 अगस्त गाज़ी मुस्तफ़ा कमाल तुर्क जी क़यादत में तारीख़ी फतह जी यादि ॾियारे थो। पाकिस्तान तुर्की अवाम सां गॾु जुरत ऐं क़ौमी अज़म जे फ़ख्र जोगी मीरास खे भेटा पेश कयूं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाती उमराह पहुची वियो। ज़रियनि जो चवणु आहे त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ सां मुलाक़ात कई। मुलाक़ात में मुल्क जे सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं थियूं। दुखीअ में गाॾी बारूदी सिंह सां टकराइजी वई। टिनि भाइरनि समेत हिकु ॼणो ज़ख़्मी। SSP जो चवणु आहे त दुखी जे इलाइक़े लूनी कलर बख़्तियार में गाॾी बारूदी सिरिंग सां टकराइजण सबबु 3 भाइर फोत थी विया, 1 ज़ख़्मी थी पियो। इतलाउ ते पुलिस इलाइक़े खे घेरे में आणे छॾियो। सर्च ऑपरेशन शुरू करे छॾियो। ईरानी सदर चयो आहे त इस्लामाबाद यादाशनामे ते अमल दरामद सां ॾुखियाईनि ते कंट्रोल करे सघिजे थो। मुआदे ते अमल करणु आसान। अमरीका ऐं इसराइल खे खिते में अदम इस्तेहकाम पैदा करण सां रोके सघिजे थो। ईरान जंग नथो चाहे। नई धमकियुनि ऐं दॿाउ सभु झुकंदो। कंहिं बि जारियत जे पूरी ताक़त सां जवाबु ॾींदासीं। आलमी बिरादरी खिते में शिकतान घटाइण में किरदारु अदा करे। नवनि इलाक़ाई मुआदनि ऐं इंतिज़ाम सां पाड़ेसरी मुस्लिम मुल्कनि जो पंहिंजे सलाहियतुनि ते भाण जी शुरूआति थी चुकी आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालिबाब चयो आहे त इलाक़ाई सिक्योरिटी मुस्लिम मुल्कनि विच में सहकार ऐं ख़्वाहिशनि जे बुनियाद ते थियणु घुरिजे। मुस्लिम पाड़ेसरीनि खे दुश्मन बदिरां सहकार ऐं भाईचारो इख़्तियारु करणु घुरिजे। इफ्तिखार गीलानीअ खे आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म बणाइण पार्टी क़यादत ऐं नवाज़ शरीफ़ जो फ़ैसिलो। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाल चयो त इफ्तिखार गीलानीअ खे वज़ीर आज़म बणाइण में कंहिंसां नाइंसाफ़ी नाहे थी। आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म चूंडण पार्टीअ लाइ ॾुखियो फ़ैसिलो ज़रूरु हो, पर पार्टी क़यादत इन मामले में कंहिंसां नाइंसाफ़ी न कई आहे। उॿावड़ो भरिसां हथियारबंदनि जी फायरिंग में नौजवान क़तल। ॻोठ लांगो में हथियारबंदनि फायरिंग करे ॿनीअ ते कमु कंदड़ लियाकत मल खे क़तल करे छॾियो। लाश ज़रूरी कारवाई बदवार सां हवाले।

0: दावा पुलिस मूजिब रहीम यार खान के खानपुर में कायनात बीबी के कत्ल केस में नामजद जवाबदार की मौजूदगी के इतलात छापो आए तो जवाबदार फायरिंग कई पुलिस की जवाबी फायरिंग सबब जवाबदार हसनैन अला डितो जमाली मार वाया। मटियारी भरसा कौमी शाहराह से ट्रक ट्रालर की टक्कर में बजणा फोत चार जणा जख्मी हादसे के नतीजे में सजाद अली समेत बजणा फोत थी वह दिल मुराद मोहम्मद अब्बास समेत चार जणा सख्त जख्मी थी पाया फोतिन जख्मियों के अस्पताल मुंतकिल कर अठहठ मोरिय में आबाद घर जो वाटर कोर्स बंद करने एहतजाज छोटकी वा गुजरात के आबादकार वाटर कोर्स बंद करने खिलाफ एहतजाज किया आबादकार आबपासी खातों रिश्वत न दियण त वाटर कोर्स बंद कर छो है चार लख रिश्वत घुरी रो है वाटर कोर्स खोल रहा है परेशानी खत्म कई वे काजी अमन के शौकत कॉलोनी के रहवासन जो गंदे पानी निकाल न कराण खिलाफ एहतजाज मुजाहिरन चे तो नाल की सफाई न थियण करे मुख्तलिफ़ बीमारियों जन्म वरतो है नाल जो पानी घर घिटिन में पीण सबब मच्छर जो आज़ार वधी वियो है गंदो पानी फौरी तौर से निकाल कराए वे नेपाल आयल बोर्ड के नतीजे में फोतिन जो अंग वधी 724 थी वियो 2000 का वधीक मानू अजा भी गुम तिब्बत में भी सतन जणन के फोत थियण की तस्दीक 554 बदस्तूर गुम भारत बे नेपाल में 320 शहरी गुम थियण की तस्दीक कर छी नेपाली इख़्तियारन मूजिब गुम थियल माण्हुनि जी ॻोल्हा वारो सिलसिलो जारी आहे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि उनमें इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: जो शहर जो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
5: GFM 90.8

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। हीअ पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे हीअ बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर ज़मीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फॉस्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: सिरनि में खूनी तकरार ॿीहर भड़की पियो। ॿिनि भाइरनि समेत अठ ॼणा क़तल। इलाइक़ो जंग जो मैदान बणियल। पुलिस जी वक़्त ते न पहुचण सबबि वधीक जानी नुक़सान थियो। ॻोठ दानो चांडियो में ॿिनि धुरनि में फायरिंग सबबि अकबर चांडियो, दुर्जा मंज़ूर, सुल्तान वतनी, बचल हाजन ऐं फिदा चांडियो क़तल। जॾहिं त खान चांडियो, दुर्जा, ॿ भाइर दीदार ऐं गुलबार चांडियो मारिजी विया। अठनि ॼणनि जा लाश इस्पताल मुंतकिल। इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त इतलाउ बावजूदि पुलिस वाक़िए वारे हंधि न पहुती, परे खां ॻोठ खे कड़ो चाढ़ियो वियो। पुलिस वक़्त ते पहुची आहे त एॾो जानी नुक़सान न थियो आहे। पुलिस जे नाहालीअ सबबि वॾो नुक़सानु थियो आहे। इलाइक़े में अञा ताईं शिकताण जारी आहे, जंहिं सबबि वधीक खून जो ख़र्चो आहे। वज़ीर आज़म जे हुकुम ते पिम्पसाने जे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ु एक्शन शुरू। एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर समेत आम उहिदेदार मुअतल। एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर राणा इमरान सिकंदर शुरूआती तौर ते 120 ॾींहनि लाइ मुअतल। एन आई सी एच इस्लामाबाद जे चीफ एग्ज़ीक्यूटिव आफ़िसर डॉक्टर मोहम्मद सलमान जूं ख़िदमतूं पिम्स हवाले। डेप्यूटेशन ते एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स मुक़रर। जॉइंट एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर चौधरी वारिस अली रज़ा ऐं हेड ऑफ गायनी डॉक्टर नौशीला अमजद। डिप्टी एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मुतायर शाह ऐं सीनियर रजिस्ट्रार गायनी डॉक्टर निगार नवाज़। एसोसिएट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स डॉक्टर सादिया रियाज़ ऐं असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी मोहम्मद उस्मान बि मुअतल। चार्ज नर्स नसरीन ऐं लेडी सिक्योरिटी स्टाफ मारिया खे फौरी तौर ते पिम्स जे एडमिन पोल में रिपोर्ट करण जूं हिदायतूं। डॉक्टर नुज़रत यासमीन पिम्स जे चिल्ड्रन वार्डन जे जॉइंट एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर तौरु मुक़ररु। डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन खे जॉइंट एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर जी चार्ज ॾिनी वई। डॉक्टर शुमैला हेड ऑफ गायनी मुक़ररु। ईरान जे सुप्रीम लीडर जे विच ओभर जे मुल्कनि खां अमरीका ऐं इसराईल ख़िलाफ़ु मुतहद थियण जी अपील। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज़्तबा ख़ामनाई पंहिंजे बयान में चयो आहे त इस्लामी क़ौमुनि जे मसइले जो हल कलमे जे इताद, दोस्ती ऐं भलाई जे राह में सहकार करणु आहे। दुश्मन सॼी दुनिया जे मुस्लमाननि में विछा पैदा करण जी कोशिशि करे रहियो आहे। विच ओभर जा मुल्क पंहिंजे हक़ीक़ी दुश्मन खे सुञाणनि, उन्हनि जा मनसूबा सम्झनि ऐं मुक़ाबिलो कनि। पाकिस्तान, तुर्की ऐं सऊदी गॾियल सलामती ऐं दिफ़ा लाइ मुतहद आहिनि। वज़ीर आज़म सदर ऐं अवाम खे इहो मौक़े ते पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त 30 अगस्त गाज़ी मुस्तफ़ा तुर्क जी क़यादत में तारीख़ी फतह जी यादि ॾियारे थो। पाकिस्तान तुर्की अवाम सां गॾु जुरत ऐं क़ौमी अज़म जे फ़ख्र जोगी मीराथ खे भेटा पेश कयूं था। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जाती उमिरा पहुची वियो। ज़रियनि जो चवणु आहे त वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ नवाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात कई। मुलाक़ात में मुल्क जी सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं थियूं। तुर्कीअ में गाॾी बारूदी सिरिंग सां टकराइजी वई। 3 भाइर फोत, 1 ज़ख़्मी। SSP जो चवणु आहे त तुर्कीअ जे इलाइक़े में गूनी कली बख़्तियार में गाॾी बारूदी सिंह सां टकराइजण सबबि 3 भाइर फोत थी विया ऐं 1 ज़ख़्मी थी पियो। इतलाउ ते पुलिस इलाइक़े खे घेरे में आणे सर्च ऑपरेशन शुरू करे छॾियो। ईरानी सदर चयो आहे त इस्लामाबाद यादाश्त नामे ते अमल दरामद सां ॾुखियाईनि ते कंट्रोल करे सघे थो। मुआदे ते अमल करण सां अमरीका ऐं इसराइल खे खिते में अदम इस्तेहकाम पैदा करण खां रोके सघे थो। ईरान जंग नथो चाहे, नई धमकियुनि ऐं दॿाउ सबबि झुकंदो। कंहिं बि जारियत जो पूरी ताक़त सां जवाबु ॾींदासीं। आलमी बिरादरी खिते में शिकताण घटाइण में किरदारु अदा करे। नवनि इलाक़ाई मुआहिदनि ऐं इंतिज़ामनि सां पाड़ेसरी मुस्लिम मुल्कनि जो पंहिंजे सलाहियतुनि ते भाण जी शुरूआति थी चुकी आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाक़िर कालीबाफ़ चयो आहे त इलाक़ाई सिक्योरिटी मुस्लिम मुल्कनि विच में सहकार ऐं ख़्वाहिश जे बुनियाद ते थियणु घुरिजे। मुस्लिम पाड़ेसरीनि खे दुश्मननि बदिरां सहकार ऐं भाईचारो इख़्तियारु करणु घुरिजे। इफ्तिखार गीलानी खे आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म बणाइण पार्टी क़यादत ऐं नवाज़ शरीफ़ जो फ़ैसिलो। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सना लाइ चयो त इफ्तिखार गीलानी खे वज़ीर आज़म बणाइण में कंहिंसां नाइंसाफ़ी नाहे थी। आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म चूंडण पार्टीअ लाइ ॾुखियो फ़ैसिलो ज़रूरु हो, पर पार्टी क़यादत इन मामले में कंहिंसां नाइंसाफ़ी न कई आहे। हैदराबाद में गुम थियल नौजवान की बाजियाबी ला सिविल सोसाइटी की एहतजाजी रैली ताज जोयो सलीम जरवार और फताह चने की अगवाणी में एहतजाज किया वो अगवाण चाहिए गुम थियण के वाक्य में वाद सबब आवाम में बेचैनी खौफ बढ़ी रो है गुम थियल नौजवान के फौरी तौर से बाजियाब कराए वे सखर में मास्तरी लाए आईबीए टेस्ट पास कंदड़ उम्मीदवार जो अपराध न मिलने खिलाफ एहतजाज पीएसटी ए जेएसटी टेस्ट पास कंदड़ उम्मीदवार जो चवण है टेस्ट पास कंदे पंज साल थी विया पर अञा तई अपराध न पिया दिना वन अपराध जारी करे परेशानी खत्म कई वे पिशावर का कोटिया वेंदड़ जाफर एक्सप्रेस के जेकमाबाद स्टेशन से रोको वो सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने सबब रेलगाड़ी के बलोचिस्तान छे वो रेलवे स्टेशन से सहूलतू न होने सबब मुसाफिर के सख्त दुख्याय दरपेश जाफर एक्सप्रेस के रोकने बाद मुसाफिर कोचेज ए वेगन जरिए कोटिया रवाना थी वह मुसाफिर के जेकमाबाद का कोटिया जो किरायो वापस किया वो ऐं ठुल भरिसां ॿारड़ी मछीअ जे तलाउ में ॿुॾी फोत घड़ीअ सन सरकीअ में पंजनि वरियनि जी सभा सरकी मछीअ जे तलाउ में ॿुॾी फोत थी संदसि जो मड़ घर पहुचण ते कोहराम मची वियो
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज मुअस्सर बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार

0: इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: Thank you.

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: साधु भरसां चांडिया बिरादरीअ जे ॿिनि धुरनि में खूनी तकरार ॿीहर भड़की पियो। ॿिनि भाइरनि सूधो, 8 ॼणा क़तल, इलाइक़ो जंग जो मैदान बणियल। पुलिस वक़्त ते सूरताल कंट्रोल करण में नाकाम। पुलिस जे वक़्त ते न पहुचण सबबि वधीक जानी नुक़सान थियो। ॻोठ दानो चांडियो में धुरनि में फायरिंग सबबि अकबर चांडियो, धुर्जा मंज़ूर सुल्तान वतनी बचल, हाजन ऐं फिदा चांडियो क़तल। ख़ान मोहम्मद चांडियो, धुर्जा ॿ भाइर दीदार ऐं गुलबार चांडियो मारिजी विया। 8 ॼणनि जा लाश इस्पताल मुंतकिल। इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त इतलाउ बावजूदि पुलिस वाके वारे हंधि न पहुती, परे खां ॻोठ खे कड़ो चाढ़ियो वियो। 4 कलाकनि खां पोइ पुलिस सूरताल ते ज़ाब्तो आंदो। पुलिस वक़्त ते पहुची आहे त एॾो जानी नुक़सान न थिया। पुलिस जे नाल इहो सबबि वॾो नुक़सान थियो आहे। नवाज़ शरीफ़, शहबाज़ शरीफ़ ऐं मरियम नवाज़ सां आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म इफ्तिखार गीलानी ऐं स्पीकर तारिक़ फारूक जी मुलाक़ात। शरीफ़ ख़ानदाननि जे टिन्ही भातियुनि इफ्तिखार गीलानीअ खे आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म थियण ते वाधायूं ॾिनियूं। आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं नवाज़ शरीफ़ आॾो सिहत, तालीम ऐं ॿियनि शोबनि लाइ सबक ॾींहनि जो मुवासिलाती मनसूबो शेयर कयो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सरकारी दौरे ते इस्तंबोल पहुची वियो। परॾेही आफ़िस मूजिबि इस्तंबोल पहुचण ते स्टाफ इंतिज़ामिया जे डिप्टी चीफ ब्रिगेडियर जनरल नायब वज़ीर आज़म जी आॼा कई। इसहाक़ डार तुर्कीअ में मुख़्तलिफ़ सरकारी सरगर्मियुनि ऐं मुलाक़ातुनि में शिरकत कंदो। ईरानी सुप्रीम लीडर जे विच ओभर जे मुल्कनि खां अमेरिका ऐं इसराइल ख़िलाफ़ मुतहिद थियण जी अपील। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई पंहिंजे बयान में चयो आहे त इस्लामी क़ौमुनि जे मसइले जो हल कलमे जे इताद, दोस्ती, भलाईअ जी राह में सहकार करणु आहे। दुश्मन सॼी दुनिया जे मुस्लमाननि में वेशा पैदा करण जी कोशिशि करे रहियो आहे। विच ओभर जा मुल्क पंहिंजे हक़ीक़ी दुश्मन खे सुञाणे हुन जा मनसूबा सम्झनि ऐं मुक़ाबिलो कनि। पाकिस्तान, तुर्की ऐं सऊदी गॾियल सलामती ऐं दिफ़ा लाइ मुतहद आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो तुर्क सदर जे आवाम खे को योम फतह जे मौक़े ते पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त 30 अगस्त गाज़ी मुस्तफ़ा तुर्क जे क़यादत में तारीख़ी फतह जो यादि ॾियारे थो। पाकिस्तान तुर्की आवाम सां गॾु जुरत ऐं क़ौमी अज़म जे फ़ख्र जोॻे मीराज़ खे भेटा पेश कयूं था। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जाती उमराह पहुची वियो। ज़रियनि जो चवणु आहे त वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ नवाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात कई। मुलाक़ात में मुल्क जी सियासी सूरताल ते ॻाल्हियूं थियूं। डुकीअ में गाॾी बारूदी सुरंग मां टकराइजी वई। 3 भाइर फोत, 1 ज़ख़्मी। SSP जो चवणु आहे त डुकीअ जे इलाइक़े लोनी कली बख़्तियार में गाॾी बारूदी सुरंग सां टकराइजण सबबि 3 भाइर फोत थी विया, 1 ज़ख़्मी थी पियो। इतलाउ ते पुलिस इलाइक़े खे घेरे में आणे सर्च ऑपरेशन शुरू करे छॾियो। ईरानी सदर चयो आहे त इस्लामाबाद यादाश नामे ते अमल दरामद सां ॾुखियाईनि ते कंट्रोल करे सघिजे थो। मुआदे ते अमल करणु आसान, अमरीका ऐं इसराइल खे खिते में अदम इस्तेहकाम पैदा करण सां रोके सघिजे थो। ईरान जंग नथो चाहे, नई धमकियुनि ऐं दॿाउ सबबि झुकंदो। कंहिं बि जारियत जो पूरी ताक़त सां जवाबु ॾींदासीं। आलमी बिरादरी खिते में शिकताण घटाइण में किरदारु अदा करे। नवनि इलाइक़ाई मुआहिदनि ऐं इंतिज़ामनि सां पाड़ेसरी मुस्लिम मुल्कनि जो पंहिंजे सलाहियतनि ते भाण जी शुरूआति थी चुकी आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाक़िर कालीबाब चयो आहे त इलाइक़ाई सिक्योरिटी मुस्लिम मुल्क विच में सहकार ऐं ख़्वाह जे बुनियाद ते थियणु घुरिजे। मुस्लिम पाड़ेसरीनि खे दुश्मननि बदिरां सहकार ऐं भाईचारो इख़्तियार करणु घुरिजे। हैदराबाद में गुम थियल नौजवाननि जे बाज़ियाबी लाइ सिविल सोसाइटी जी एहतजाजी रैली ताज जोयो, प्रिया कुमारी ऐं फताह चने ॿियनि जी अॻुवाणीअ में एहतजाजी रैली कढी वई। अॻुवाणनि चयो त गुम थियलनि जी वाक़नि में वाद सबबि आवाम में बेचैनी ऐं खौफ़ वधी रहियो आहे। गुम थियल नौजवाननि खे फौरी तौरु बाज़ियाब करायो वञे। सखर में मास्तरीअ लाइ IBA टेस्ट पास कंदड़ उमेदवारनि जो ऑफर आर्डर न मिलण ख़िलाफ़ एहतजाज। PST ऐं JST टेस्ट पास कंदड़ उमेदवारनि जो चवणु आहे त टेस्ट पास कंदे 5 साल थी विया आहिनि, पर अञा ताईं ऑफर आर्डर न पिया ॾिना वञनि। ऑफर आर्डर जारी करे परेशानी ख़तमु कई वञे। पिशावर खां कोटिया वेंदड़ जाफर एक्सप्रेस के जेकमाबाद स्टेशन ते रोकियो वयो। सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलण सबब रेलगाड़ी के बलोचिस्तान न छॾी वयो। रेलवे स्टेशन ते सहूलतूं न हुजण सबब मुसाफ़िरनि खे सख़्त ॾुखियाई दरपेश अची रहियूं आहिनि। जाफर एक्सप्रेस खे रोकण बाद मुसाफ़िर कोचिस ऐं वेगन ज़रिए कोटिया रवाना थी विया। मुसाफ़िरनि खे जेकमाबाद खां कोटिया जो किरायो वापसि कयो वियो। ठुलवे जो ॿारी मछीअ जे तलाउ में ॿुॾी फोत। गड़ी हसन सरकीअ में पंजनि वरियनि जी सभा सरकी मछीअ जे तलाउ में ॿुॾी फोत थी। मड़ घर पहुचण ते कोराम मची वियो। ऐं पाकिस्तान ऐं इंग्लैंड विच में ॿी टेस्ट मैच में मेज़बान इंग्लैंड पाकिस्तान खे फतह लाइ 399 रन्स जो हदफ ॾेई छॾियो। इंग्लैंड जी टीम ॿी इनिंग में 208 रन्सूं ठाहे आउट थी वई। पाकिस्तान पारां मोहम्मद अब्बास, पंज खुरम शहज़ाद ऐं मोहम्मद अलीअ ॿ विकेटूं वरितियूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहो बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
4: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरण ऐं सकरण जो आवाज़
5: GFM 90.8।

लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज मुअस्सर बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: आप सुन रहे हैं
4: DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है,
0: सुनते रहो GFM 90.8।
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तां बुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे मां गुलाब खान बेण।

सिंध राउंडअप में अज अवां बुधी सकंदा हैदराबाद में हजारे माण्हुनि जो वहदत सिंध मार्च धरतीअ जे इंच इंच जी हिफाज़त कबी अॻवाणनि जो ख़िताब सिंध जा 6,220 स्कूल ज़बून करार पढ़ाई बंदि शागिर्द मुतबादिल स्कूलनि ॾांहुं मोकिलण जो हुकुम दादूअ में 3 महीननि जो ॿारु 1.5 लख में मुबैना विकिरो पीउ ते इल्ज़ाम अमर जूं मीडिया अॾोदाहूं मीरपुर खास में 46 सेकेंडरी स्कूल टीचर भर्ती आईडीज बि अलाट थी वयूं हैदराबाद सखर मोटरवे खां अॻु पंजाब में नओ मनसूबो सिंध वफ़ाक जे ॿिटे मयार ते एतिराज़ वारे छॾियो ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा पोरियतनि जी महिनत तबकाती फ़र्क़ ऐं समाजी तब्दीलीअ जी जिदोजहद सिंध एक्शन कमेटी पारां सिंध जे विरागे ऐं वसीलनि ते वधीक वालार वारनि साज़िशुनि ख़िलाफ़ काल्ह हैदराबाद में कासमाबाद पूनम चौक खां वहदत सिंध मार्च कयो वियो मार्च वाधूवा रोड नसीम नगर चौक खां थींदो वाधूवा गेट ते पहुची जलसे जी सूरत इख़्तियार करे वियो मार्च में सिंध एक्शन कमेटी में शामिल जमातुनि समेत सियासी क़ौमपरस्त ऐं तरक़ी पसंद पार्टियुनि जे हज़ारे कारकुननि शिरकत करे सिंध जो विरागो नामंज़ूर सिंध जे वसीलनि ते वालार नामंज़ूर जा ज़ोरदार नारा हयां अॻवाणनि ख़िताब कंदे चयो त सिंध जी तारीख़ ऐं जाग्राफ़ी हैसियत बचाइण जे लाइ तहरीक जो ही पहिरीं शुरूआत जो मरहलो आहे सिंध जा किरोड़े माण्हू रोडनि ते निकिरी ईंदा ऐं पंहिंजे वतन जी हिफ़ाज़त करे ॾेखारींदा हुननि चयो त सिंध धरतीअ जा वारस ऐं नौजवान न रुगो सिंध पर धरतीअ जा वसीला बि बचाईंदा हीअ हुकमरान सिंध जो विरागो करण जा ख़्वाब ॾिसण छॾे ॾियनि हिननि वधीक चयो त वहदत सिंध तारीख़ी मार्च पंहिंजे वतन ऐं धरतीअ सां अहद वफ़ा जो ॾींहुं मल्हाए सिंध दुश्मन हुकमराननि खे पैगाम ॾेई छॾियो आहे त सिंध जा गैरतमंद माण्हू सिंध जी विरासत कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदा तालीम खाते पारां सिंध जे 6,220 स्कूलनि खे ज़बून करार ॾेई पढ़ाई बंदि करण जो हुकुम जारी करे छॾियो आहे अख़्तियारनि मूजिबि मॉनसून जे मौसम दौरान ज़बून हाल इमारतुनि जे शागिर्दनि खे वेझनि स्कूलनि में मुंतकिल करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे उन ॾह समय तालीम खाते डिप्टी कमिश्नरनि खे चयो आहे त उहे ज़बून हाल इमारतुनि वारनि स्कूलनि जे वेझो मुतबादिल स्कूल ॻोल्हनि त जीअं शागिर्दनि खे उते मुंतकिल करे सघिजे खाते पारां उहो बि ॿुधायो वियो आहे त ज़बून हाल स्कूलनि जी मरम्मत कॾहिं शुरू ऐं कॾहिं मुकमल थींदी शागिर्दनि मुतबादिल स्कूलनि मां पंहिंजे स्कूलनि ॾांहुं कॾहिं वापसि ईंदा ज़बून हाल इमारतुनि वारा उहे स्कूल सूबे जे 30 ज़िलनि में आहिनि ज़बून हाल इमारतुनि जो सभ खां वधीक अंगु बदीन मीरपुर ख़ासि ऐं थरपारकर ज़िलनि में आहे दादू मिटनि में हिन जे मासूम ॿार खे मुबैना तौरु 1.5 लख रुपियनि एवज़ विकिरो करण जो इल्ज़ाम साम्हूं अचण बाद ए सेक्शन पुलिस ॿार जे वाल सुलेमान पवार खे हिरासत में वठी मामले जी जाच शुरू करे छॾी मुतासिर औरत पंहिंजे भाउ राशिद अली ऐं मासूम नियाणियुनि ज़ाहिदा निदा ऐं एमन सां गॾु एहतजाज कयो ऐं ॿार जी बाज़ियाबी जे लाइ अपील कई मुतासिर औरत पंहिंजे मुड़ुसु सुलेमान पवार ते इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो त संदसि 3 महीननि जो मासूम पुटु महराज खे मुबैना

ॾाढो बरसाति चांडे बिरादरी जी बिंदुरियुनि में ख़ूनी तकरार ॿीहर भड़की पियो। ॿिनि भाइरनि सुधो जहिड़ा कतल इलाइक़ो जंग जो मैदान बणियल। पुलिस वक़्त ते सूरत हाल कंट्रोल करण में नाकाम। पुलिस जे वक़्त ते न पहुचण सबबि वधीक जानी नुक़सानु थियो। ॻोठ दानू चांडियो में धुरियन विच में फायरिंग सबबि अकबर चांडियो, तुर्जा मंज़ूर, सुल्तान वतनी, बचल हाजन ऐं फिता चांडियो क़तल। ख़ान मोहम्मद चांडियो, तुर्जा बफ़ाइर, दीदार ऐं गुलबार चांडियो मारिजी विया। ॿटई ॼणनि जा लाश वारिसनि हवाले। इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त इतलाउ बावजूदि पुलिस वाकिए वारे हंधि न पहुती। परे खां ॻोठ खे कड़ो चाढ़ियो वियो। चारि कलाकनि खां पोइ पुलिस सूरत हाल ते ज़ाब्तो आंदो। पुलिस वक़्त ते पहुचे हा त एॾो जानी नुक़सानु न थिए हा। पुलिस जी नाअली सबबि वॾो नुक़सानु थियो आहे।

0: इंतजामी यूनिट्स बाबत रिकॉर्ड थियण चाहूँ था तो केर सिंध जहा टुकड़ा कर चाहे तो यूपी सिंध के सदर निसार कोड़े है तनकी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों असा बार बार पे बार पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो असा बार पैर पोलियो का कतरा पी चुको है। मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल है। मां बार शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो का कतरा पीण से बार की इम्यूनिटी जो बेहतर थिए थी। हाँ जो कैंपेन अचे थी जैमें असा जो पोलियो जो डींदी उनमें का भी सुई इस्तेमाल नी बगैर कें दर्द के वैक्सीन जे बार के करा जी असो पाकिस्तान इन पोलियो जड़े मुझी मर्द में जो महफूज रह।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: GFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

वही उन्होंने कहा है जो भी कहा है, और कहीं ना कहीं इस चीज का जो है वो मैं समझता हूँ कि नोटिस लेना भी चाहिए था, जो कि लिया भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। पर अब आ जाते हैं लॉर्ड्स में जो मुकाबला खेला गया उसको, मुकाबले में जनाब सबसे लॉर्ड्स के मुकाम पर, जबकि खेल का चौथा रोज और चौथे रोज का दूसरा सेशन जारी है। पाकिस्तान जैसे इस मुकाबले को जीतने के लिए 389 रन का टारगेट मिला है। पाकिस्तान की टीम ने बनाए हैं 94 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और ये 3 विकेट बहुत पहले गिर गई थी। इस वक्त साउथ शकील अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं, जो कि इंग्लैंड में उनकी पहली हाफ सेंचुरी है, और उनके साथ बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं शान मसूद, जो कि 20 रन पर नॉट आउट हैं। बाबर आजम एक बार फिर नाकाम रहे, अजान अवैस एक बार फिर नाकाम रहे, और अब्दुल्ला शफीक भी नाकाम रहे। पहले टेस्ट मैच लीड्स के मुकाम पर, इंग्लैंड जीतकर पहली सीरीज में 1-0 से आगे है, ये बात हो रही है इस वक्त दूसरे टेस्ट मैच की, जिसका चौथा दिन है, और यहाँ भी अभी 295 रन पाकिस्तान को चाहिए, 7 विकेट पाकिस्तान के पास बाकी, और इस वक्त लॉर्ड्स के मकाम पर बारिश जो है वो जारी है। अपना पूरे मैच का स्कोर कार्ड आपको बताते चलूं, इंग्लैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए पहली अपनी इनिंग्स में जो है वो 290 रन स्कोर किए, जिसमें बेन डकेट LBW किया मोहम्मद अब्बास ने 17 रन बनाए थे उन्होंने 20 गेंदों पर, एंड स्ट्रक 3 बाउंड्रीज। एमिलियो गे को कैच लिया मोहम्मद रिजवान ने, मोहम्मद अब्बास अगेन बॉलर थे, 8 रन बनाए 17 गेंदों पर एंड स्ट्रक 2 बाउंड्रीज। जॉर्डन बॉक्स ने बहुत अच्छी बैटिंग की, सलमान अली आगा ने इनका कैच किया, खुर्रम शहजाद की गेंद पे 55 रन बनाए 105 गेंदों पर स्ट्रक 7 बाउंड्रीज। जो रूट जो कि इंग्लैंड के एक बार फिर कैप्टन बनाए गए हैं, LBW किया मोहम्मद अब्बास ने, 4 रन बनाए 13 गेंदों पर, हैरी ब्रूक को बोल्ड किया मोहम्मद अली ने, 15 रन बनाए 26 गेंदों पर, 2 चौके लगाए। जो लॉरेंस थे रन आउट हुए, 17 रन बनाकर 41 गेंदों पर 1 चौका लगाया। जेमी स्मिथ को बोल्ड किया मोहम्मद अली ने, 61 रन बनाए 10 चौके लगाए। गस एटकिंसन ने 45 रन बनाए 46 गेंदों पर, 6 चौके लगाए। ऑली रॉबिन्सन को बोल्ड किया मोहम्मद अली ने, 2 रन बनाया। जॉफ्रा आर्चर को बोल्ड किया मोहम्मद अब्बास ने, 14 रन बनाए। और जोश टंग 30 रन पर नॉट आउट रहे 48 गेंदों पर, 4 चौके लगाए एक्स्ट्रा से 24, जिसमें बाय 2 लेग बाय 11 और नो बॉल के 11 रन थे। 66.4 ओवर में इंग्लैंड की टीम 290 पे ऑल आउट हुई पहली इनिंग्स में। फर्स्ट विकेट फेल एट 21, सेकेंड एट 26, थर्ड वेंट डाउन एट 36, चौथी विकेट 77 पे गिरी, पांचवी 120 पे, छठी 187 पे, सातवीं 222 पे, आठवीं 222 पे, नवीं 243 पे, दसवीं विकेट 290 पे गिरी, यानी लास्ट विकेट एडेड 47 वैल्यूएबल रन्स। पाकिस्तान के लिए जनाब मोहम्मद अब्बास ने 4 ओवर किए, सॉरी 4 विकेट्स लिए, 20 ओवर किए, 3 मेडल 73 रन दिए। खुर्रम शहजाद ने 15 ओवर्स में 80 रन देकर एक आउट किया। मोहम्मद अली ने 22 ओवर में 86 रन देकर 3 आउट किए, और अली उस्मान ने 9.4 ओवर में 39 रन देकर 1 खिलाड़ी आउट किया। जवाब में पाकिस्तान के आगाज बड़ा खराब रहा, शान मसूद ने कैच लिया, जेमी स्मिथ ने आर्चर की गेंद पे 1 रन बनाया 11 गेंदों में, अजान अवैस ने अच्छी बैटिंग की, कॉट एमिलियो बॉल रॉबिन्सन 46 रन बनाए 102 गेंदों पर, 7 चौके लगाए। अब्दुल्ला शफीक, कॉट, जेमी स्मिथ बोल्ड, जोश टंग 5 रन बनाए 32 गेंदों पर, बाबर आजम कॉट, कॉक्स बोल्ड, टंग 8 रन बनाए 10 गेंदों पर, साउथ की LBW किया रॉबिन्सन ने 16 गेंदों पर 16 रन बनाए 4 चौके लगाए। मोहम्मद रिजवान, LBW बोल्ड रॉबिन्सन 7 रन बनाए 20 गेंदों पर 1 चौका लगाया। अली उस्मान को बोल्ड किया आर्चर ने, 1 रन बनाया 13 गेंदों पर। खुर्रम शहजाद, कॉट, ब्रूक, बोल्ड, रॉबिन्सन, उन्होंने 1 रन बनाया, उन्होंने 1 रन बनाया और 1 रन बनाया 5 गेंदों पर। उसके अलावा मोहम्मद अब्बास ने 2 रन बनाए, मोहम्मद अली ने 3 रन बनाए, इमामुल हक हर्ट हुए थे लिहाजा उन्होंने बैटिंग नहीं की, 20 एक्स्ट्राज रहे। 110 पे पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हुई। फर्स्ट विकेट 12/5, सेकेंड 16, थर्ड वेंट डाउन एट 30, चौथी 63 पे गिरी, पांचवी 91, छठी 104, सातवीं 105, आठवीं 106 और नवी विकेट 110 पे गिरी एंड पाकिस्तान स्किटर्ड आउट।
रॉबिन्सन ने 13 ओवर किए, 6 मेडन, 11 रन, 4 विकेट। आर्चर 11.2 ओवर, 26 रन, 3 विकेट। जॉश टन 6 ओवर, 27 रन, 2 विकेट। और दस एटकिंसन 7 ओवर, 33 रन और कोई विकेट हासिल नहीं की। तो इस तरह इंग्लैंड की टीम ने 180 रन की एक बड़ी बढ़तरी जो है वो हासिल की। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में जो है वो अच्छी बैटिंग नहीं की। बेन डकेट, कॉट, बाबर आजम बोल्ड, खुरम शहजाद 1, अमीलियो गे, एलबीडब्ल्यू बोल्ड, मोहम्मद अब्बास 31 रन, 74 गेंदों पे 6 चौके। जॉर्डन कॉक्स, एलबीडब्ल्यू, खुरम शहजाद 11 रन, 9 गेंदों पे 2 चौके। जो रूट, एलबीडब्ल्यू, मोहम्मद अली 24 रन, 37 गेंदों पे 3 चौके। हैरी ब्रोक, कॉट, मोहम्मद रिजवान, बोल्ड, अब्बास 34 रन, 56 गेंदों पे 5 चौके। डॉन लॉरेंस, बोल्ड, मोहम्मद अब्बास 54 रन, 70 गेंदों पे 7 चौके और 2 छक्के। बहुत ही जारहाना बैटिंग की उन्होंने। उसके अलावा जेमी स्मिथ ने 7 रन बनाए, 13 गेंदों पे 1 चौका। रस एटकिंसन ने 7 रन बनाए, 21 गेंदों पर 1 चौका। ऑली रॉबिन्सन ने 8 रन बनाए, 15 गेंदों पे 1 चौका। जॉफ्रे आर्चर नॉट आउट रहे, 2 रन बनाकर 14 गेंदों पे। जोश टन ने 12 रन बनाए, 15 गेंदों पे 2 चौके लगाए। एक्स्ट्रास थे 17 और इंग्लैंड की टीम 208 रन बनाकर ऑल आउट हुई अपनी सेकेंड इनिंग्स में और 54.4 खेला। पहली विकेट उनकी दूसरी इनिंग्स की 1 पे, दूसरी 13, तीसरी 60, चौथी 83, पांचवीं 128, छठी 149, सातवीं 162, आठवीं 186, नवीं 187 और दसवीं विकेट 208 रन पे गिरी। इस तरह इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान की टीम को 389 रन का टारगेट ये मुकाबला ये टेस्ट मैच जीतने के लिए दिया। पाकिस्तान के लिए दूसरी इनिंग्स में मोहम्मद अब्बास पिक ऑफ द बॉलर रहे, 22 ओवर, 3 मेडन, 57 रन और 5 विकेट। ही वाज स्विंगिंग द बॉल हियर एंड देयर एंड ही वाज बॉलिंग मैग्निफिसेंटली वेल एंड इंग्लिश बैटर्स वर लुकिंग एब्सोल्युटली क्लूलेस अगेंस्ट अब्बास। ये मुझे बताना होगा, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने निहायत आला, निहायत शानदार, निहायत खूबसूरत और उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया एंड ही लुक्ड इन ग्रेट ग्रेट बॉलिंग निक। खुरम शहजाद 14 ओवर, 3 मेडन, 56 रन और 2 विकेट। मोहम्मद अली ने 16.2 ओवर किए, 1 मेडन, 70 रन और 2 विकेट। अली उस्मान ब्रॉट इन फॉर जस्ट कपल ऑफ ओवर्स एंड ही गिव अवे 17 रन एंड डिडंट टेक एनी विकेट। इस तरह ये लेखा जोखा रहा पाकिस्तान के बॉलर्स का। जहां तक ताल्लुक है इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स का, पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स का आगाज एक बार फिर बड़ा खराब रहा। अजान अवैस, एलबीडब्ल्यू, बोल्ड, रॉबिन्सन 6 रन, 14 गेंदों पे 1 चौका लगाया। अब्दुल्ला शफीक, बोल्ड, रॉबिन्सन जब उन्होंने उनका ऑफ स्टंप उखाड़ दिया ऑन अ ब्यूटी, दैट वाज वन पीच ऑफ अ बॉल एंड अब्दुल्ला शफीक लुक्ड ऑल बट इन ट्रबल। जिन्होंने 3 गेंदें खेली कोई रन बना सके। बाबर आजम की नाकामियों, बाबर आजम की महरूमियों, बाबर आजम के जवाल का सिलसिला तवील होता जा रहा है जहाँ तक इंटरनेशनल क्रिकेट का ताल्लुक है। मैं इंटरनेशनल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि PSL वो बहुत अच्छी खेले हैं और अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेकेंड टेस्ट में ही प्लेड रियली वेल। अगर यहाँ एक बार फिर नाकाम हुए, कॉट, कॉक्स, बोल्ड, आर्चर 6 रन बनाए। पहली इनिंग्स में भी उनका कैच कॉक्स ने लिया था। 8 गेंदें खेले बाबर आजम, 1 चौका लगाया, एक्स्ट्राज एंड 9। और उसके बाद एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनी है साउथ शकील और शान मसूद के दरमियान जो ताहाल जारी है। शान मसूद 21 रन पर नॉट आउट हैं, 61 गेंदें खेलकर 2 चौके लगाए हैं, जबकि साउथ शकील ने 57 रन किए हैं 74 गेंदों पर एंड स्ट्रक 10 बाउंड्रीज। दिस इज लुकिंग इन ग्रेट टच एंड ग्रेट निक एंड देयर हैव बीन 9 एक्स्ट्रा एज वेल एंड पाकिस्तान आर 99 for 3 करंटली। और इस तरह अभी भी जो है वो पाकिस्तान की टीम को 290 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये है सुरतेल एंड पाकिस्तान हैव गॉट स्टिल गॉट 7 विकेट्स इन देयर हैंड्स। ये सुरतेल है मोहम्मद अब्बास ने, मैंने जिक्र कर दिया था इनकी बॉलिंग का। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड के लिए रॉबिन्सन अपना 8वां ओवर कर रहे हैं, 13 रन देकर 2 विकेट्स लिए। जॉफ्रे आर्चर ने 10 ओवर में 38 रन देकर 1 खिलाड़ी आउट किया है। जॉश टन 3 ओवर 16 रन एंड हैजंट टेकन अ विकेट, जबकि 4 ओवर किए गस एटकिंसन ने इवन फॉर 24 एंड डेन लॉरेंस ने 2 ओवरों में 2 रन दिए हैं और कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया है। लेट्स सी लॉर्ड्स टेस्ट मैच रिपोर्ट। और लॉर्ड्स का मकाम हम जानते हैं, इसे क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। लॉर्ड्स की एक अपनी वैल्यू है, लॉर्ड्स का एक अपना
जो है वो रिदम है, और लॉर्ड्स के मुकाम पर पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलता रहा है। पाकिस्तान 93 में भी जीता था यहाँ, 96 में भी जीता था, उसके अलावा भी टेस्ट मैचेस जीता रहा है, मगर अब पिछले कुछ अरसे से टीम की कारकर्दगी मैं समझता हूँ गोइंग बैक टू वर्ल्ड। नासिर हुसैन ने भी कहा और बहुत सारे दूसरे खिलाड़ियों ने भी, इंग्लैंड के और हमारे अपने खिलाड़ियों ने कहा कि ये पाकिस्तान की कमजोर तरीन टीम है। पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के बारे में नासिर हुसैन ने कहा ये होता था कि वो बहुत अच्छे मैच है, उन्होंने कहा ये वो अब अच्छे मैच नहीं है, पाकिस्तान सीधा सीधा हार रहा है, और पाकिस्तान की एक अनप्रडिक्टेबिलिटी होती थी कि आज अगर हारे हैं तो कल जीत सकते हैं, और बोल रहे हैं पाकिस्तान सीधा सीधा हार रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम का वो वैनम, वो फाइट, उसकी वो अनप्रडिक्टेबिलिटी, उसका वो अंदाज कम बैक करने का फ्रॉम नोवेयर, आहिस्ता आहिस्ता डूबता जा रहा है। इन पर्टिकुलरली इन टेस्ट मैचेस टीम की कारकर्दगी बहुत खराब है। कौन है जिम्मेदार, क्या मामला है, क्यों हो रहा है ऐसा, इस पर बहुत सारी बात हो भी रही है, हो भी सकती है। हम अपने मुख्तलिफ जो हमारे मोतबर सहाफ़ी हैं, कमेंटेटर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनकी उनके मुख्तलिफ जो अकवाल हैं, उन्होंने जो मुख्तलिफ अपनी राय दी है क्रिकेट टीम के हवाले से, वो प्रोग्राम के अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे। साथ साथ इस वक्त एक बार फिर आपको बताते चलेंगे, करंटली मैच गॉट अंडर वे रेन ब्रेक के बाद, और 102 रन हो गए पाकिस्तान के 3 विकेट के नुकसान पर। दे आर नीडिंग अनदर 287 फॉर द विक्ट्री एंड दे हैव गॉट 7 विकेट्स इन डेक्ट। और इंग्लैंड का भी बेसबॉल का जमाना एक तरह से मुकम्मल हुआ जब बेन स्टोक्स ने टीम को छोड़ दिया है, एंड जो रूट हैज बीन गिवन द रिस्पांसिबिलिटी एज कैप्टन अगेन, एंड जो रूट इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर, वी ऑल नो ही इज अ टेरिफिक बैटर। रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, और मैं समझता हूँ कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो मजीद इंग्लैंड के लिए अपनी कारकर्दगी भी बेहतर करेंगे और इंग्लैंड की टीम की कारकर्दगी भी। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की वो टीम नहीं जो टीमें इंग्लैंड का दौरा इससे पहले जैसी मजबूत टीमें करते रहीं, तो असल इम्तिहान दोबारा अभी जो रूट का भी आएगा जब वो साउथ अफ्रीका का दौरा करेगी या ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे या फिर इंडिया से जब खेलेंगे। हालांकि इंडिया की सूरत हाल भी होम सीरीज में भी न्यूजीलैंड से भी हारे, साउथ अफ्रीका से भी हारे, कोई आजकल बहुत अच्छी नहीं है, बट जो भी है इंडिया वाला वेरी वेरी गुड साइड। और इस वक्त स्कोर 107 पे जा पहुंचा है, पाकिस्तान के बैटर्स अपने स्ट्रोक्स लेने से नहीं चूक रहे हैं, और ख़ासतौर पे साउथ शकील इज डूइंग अ गुड जॉब, और वो बहुत ही उमदगी के साथ इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, विच इज नाइस टू सी। और मैं समझता हूँ कि साउथ शकील पर्टिकुलरली आर्चर को भी बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, इट्स डूइंग इट्स टेरिफिक जॉब, और मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरत भी थी कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से बैटिंग की जाए। साउथ गोज अप टू 62, 11 बाउंड्रीज ही हैज स्ट्रक सो फार, 76 बॉल्स ही हैज फेस्ड सो फार। शान मसूद नॉट आउट एंड 24 पे 65 गेंदों पे 2 चौके वो भी मार चुके हैं। प्रोग्राम में वायरल हम पहले ब्रेक की जाने पड़ चुके हैं, प्रोग्राम में इस वक्त आइए लेते हैं एक कमर्शियल ब्रेक, जब वापस लौटेंगे तो मजीद बात करेंगे लॉर्ड्स टेस्ट मैच की भी और मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक ऑन जीएफएम रेडियो नेटवर्क।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए
1: जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

जाते हैं वहाँ हार जाते हैं, वेस्ट इंडीज जाते हैं वहाँ भी हार जाते हैं, बुरी तरह हार जाते हैं, 200 रन भी चेज नहीं हो पाते हमसे। इसी तरह वेस्ट इंडीज वहाँ आती है, पाकिस्तान हमें हरा देती है, बांग्लादेश वहाँ आती है हमें हरा देती है, ऑस्ट्रेलिया आती है हराती है। ये टीम पाकिस्तान की खास तौर पर टेस्ट टीम को हुआ क्या है? क्या वो टैलेंट, क्या वो प्लेयर ही खत्म हो गए हैं या सही प्लेयरों को सिलेक्ट नहीं किया जा रहा? अब अभी मेरा सवाल बनता है, क्या अजान अवैस इज द राइट चॉइस? जान जोफ्रा आर्चर स्ट्रॉमिंग इन एट अ पेस ऑफ 145-148 94 मील फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करते मैंने आज उनको देखा है टेलीविजन में, और साथ साथ जो उनके दूसरे कुछ बॉलर हैं उनकी भी पेस अच्छी खासी है। अच्छा, दूसरा ये कि एक ऐसा ओपनर जो भी बिल्कुल नया है उसको जोफ्रा आर्चर के सामने और रॉबिन्सन के और जोस्टन के सामने थ्रो करने वाली बात नहीं और टफ है। इसी तरह आप जब इंग्लैंड आए हैं जहाँ गेम पेस भी आपको चाहिए और आपको क्वालिटी सीम और स्पिन करना भी आप जानते हो, तो वहाँ नसीम शाह एक अच्छी चॉइस हो सकते थे, उनको दौरे पे नहीं लाया गया। और शाहीन शाफी कुड बी अ गुड चॉइस, ठीक है वो 20 आरिफ राउत पर वो भी नाकामी रहते हैं, मगर टेस्ट मैच में लाने की मैं समझता हूँ एटलीस्ट एक विकेट टेकिंग ऑप्शन तो बनता है ना, तो उनको भी नहीं कराया गया, उनको भी नहीं लाया गया। तो कहीं ना कहीं तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ है, ये नहीं कहता कि हम जीत ही जाते हैं, हम इंग्लैंड को वाइट वॉश कर देते, मगर शायद पहला टेस्ट इस तरह से ना हारते, ना वेस्ट इंडीज में, ना हेडिंगली लीड्स में, इंग्लैंड में। इसके अलावा आप देखें क्या कुछ नहीं हो रहा, आकिब जावेद आते हैं कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, गैरी क्रिस्टन भी एक तरह से टीम से गायब हो गए, और भी बहुत सारे लोग जो थे, तो आई मीन के कुछ कुछ कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। भले आप अपने आप को कितना भी तसल्ली दें, बट देयर मस्ट बी समथिंग गोइंग रॉन्ग। अच्छा, बाबर आजम हैज बीन गिवन द कैप्टनसी अगेन वेस्ट इंडीज के टूर पर। मैं समझता हूँ ये थोड़ा हार्श है बाबर आजम, लार्ज नंबर ऑफ फैंस जो यकीन उन्हें मेरी बात पसंद नहीं आएगी, मगर बाबर आजम को मैं समझ रहा हूँ शायद कैप्टनसी एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए। यानी वो स्ट्रेकन ऑफ द कैप्टनसी, फिर उन्हें जिस तरह से वर्ल्ड कप में टाइम ड्रॉप भी किया गया 2020 के वर्ल्ड कप में, उनका नंबर भी चेंज किया गया, एंड नाउ ही हैज बीन गिवन द कैप्टनसी बैक। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बड़ा जिसे कहना चाहिए गमनाक चीज़ है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फॉर मी कि क्यों, व्हाई डिड ही एक्सेप्ट द कैप्टनसी अगेन? और फिर जब, और अगर आपने कैप्टनसी एक्सेप्ट की है तो मैं समझू फिर आपके अंदर इतनी ताकत, इतनी कुव्वत, इतनी गट्स होने चाहिए थे कि आप अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट साइड लेके जाते, आप अपनी जो टीम आप चाहते थे, जो डिजर्विंग प्लेयर थे उनको लेके जाते। मेरा ख्याल है कि आकिब जावेद इज मेकिंग लॉट ऑफ बैड डिसीजन एज वेल, आई डोंट वॉन्ट टू बी वेरी क्रिटिसाइजिंग, मैं कोई क्रिटिसाइज करने वाला आदमी नहीं, मैंने पहले भी बताया और आप मुझे जानते भी हैं, रेडियो कॉमेंट्री भी आप सुनते हैं, मेरी टीवी पे भी देखते होंगे और साथ साथ मुझे आप प्रोग्राम में भी इतने अच्छे से सुन रहे हैं। मैं कोई क्रिटिसाइज करने वाला बंदा नहीं हूँ, मगर यार मैं समझ रहा हूँ अजान अवैस को किसी तरह लेके नहीं जाना चाहिए। जो हमारी पहली टीम में जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जब लॉर्ड्स में 96 में जीते तो ओपनर सई अनवर थे, वो सब अच्छी खासी सेंचुरियाँ बना चुके थे और तीसरे टेस्ट में ओवल में उन्होंने सेंचुरी बना भी डाली थी, और लॉर्ड्स टेस्ट में इंजमाम ने सेंचुरी बनाई थी उस वक्त। तो इसके बाद अलावा 93 में भी हमारे पास अच्छे ओपनर आमिर सोहेल वगैरह मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं अब ऐसी ओपनर इंग्लैंड में ऑलवेज नई बॉल के साथ बॉल हुक्स अराउंड इट चेक्स बैक इन टूवर्ड्स दी बैट इज द टाइम्स, गेंद जो है बाकायदा स्विंग और सीम होती है, और इंग्लैंड के तकरीबन जो भी बॉलर रहते हैं, जो भी उनका पेस अटैक होता है, वो बहुत अच्छे से जानता है कि गेंद को स्विंग और सीम किस तरह करना है, क्योंकि दे हैव नो स्टूवर्ट ब्रॉड नाउ, दे हैव नो एंडरसन नाउ, मगर मैं समझता हूँ कि रॉबिन्सन ने और आर्चर ने उनके पेस अटैक को बहुत अच्छे अंदाज में संभाल लिया है, जो बहुत आर गुड बॉलर्स, और मैं समझता हूँ कि
कहीं ना कहीं ये इस चीज का ध्यान रखना होगा, इस चीज का ख्याल रखना होगा कि ऐसी अजान अवैस को शायद मेरे नजदीक नहीं लेके। आई होप 47 रन भी उन्होंने किए हैं, I don't want to take anything away, लेकिन कभी कभार हो ये जाता है कि ज्यादती हो जाती है ऐसे खिलाड़ियों के साथ जिन्हें शायद अगर आप पाकिस्तान में किसी और टीम के खिलाफ किसी और कंडीशन में मौका देते तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो सकती है। ये मेरा कहने का मकसद, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बहरहाल लेट्स गेट बैक टू द लॉर्ड्स, और लॉर्ड्स में अभी मैं आपको सूरत हाल बता देता हूँ कि पाकिस्तान हैव मूव्ड अप टू 111 फॉर 4। ओहो, शान मसूद इज गॉन, आउट हो गए शान मसूद। माय गॉड, ये कोई अच्छी खबर नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड लेट्स सी कि मैं उनकी डिसमिसल आपको बता दूँ कि हु गॉट इज वर्थ इट। शान मसूद LBW बोल्ड रॉबिन्सन 26 रन बनाए 72 गेंदों पे, 2 चौके लगाए और नेल्सन पे विकेट गिर गई है जनाब 111 पे पाकिस्तान की चौथी। एंड अगेन पाकिस्तान नाउ इन डायर स्ट्रेट्स, अगेन पाकिस्तान इज इन डीप ट्रबल। अब अकेले साउथ शकील पे कुछ उम्मीद की जा सकती है या फिर आप देखते हैं मोहम्मद रिजवान जो बैटिंग करने के लिए आए, कैन ही प्ले अ बिग इनिंग्स हियर, क्या वो यहाँ कोई बड़ी इनिंग्स खेल सकते। उसके बाद इमामुल हक स्टिल कंफर्म नहीं है कि वो बैटिंग करने के लिए आ भी सकेंगे नहीं, क्या कंडीशंस हैं उनकी क्या नहीं। देन यू विल डाउन टू योर बॉलर्स, जिसमें अली उस्मान का बहुत तजर्बा नहीं बैटिंग का, खुर्रम शहजाद का भी नहीं, मोहम्मद अब्बास का भी नहीं, मोहम्मद अली का भी नहीं, एंड यू आर स्टिल नीडिंग 278 रन फॉर द विक्ट्री। तो अब तो मेरा ख्याल है कि कुछ मुश्किल होने वाली है पाकिस्तान को। फाइनल लेट्स सी, वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट के जो भी सूरत हाल बनती है अगले प्रोग्राम के चंक में, अगले प्रोग्राम के हिस्से में भी जो कि आएगा इस ब्रेक के बाद, उसमें आपसे शेयर करेंगे। इस वक्त हम प्रोग्राम में दूसरे ब्रेक की जाने बढ़ गए हैं, आइए लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, देन विल बी राइट बैक ऑन GAFM रेडियो नेटवर्क जहाँ पर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं स्पोर्ट्स राउंडअप मेरे आपके अपने मेजबान राणा अशफाक के साथ। लेट्स गो एंड टेक अ ब्रेक।

मेरा साथ होता है संडे की शाम 7 से लेकर 8 बजे तक। प्रोग्राम के हम आखिरी मरहले में पहुंच गए हैं और आखिरी मरहले में पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान का स्कोर पहुंच गया है 115 रन 4 विकेट के नुकसान पर। साउथ शफील स्टिल होल्डिंग द फोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड रिजवान द विकेट कीपर बैटर इज अलोंग साइड हिम। जो दुबई में मुकाबला जारी है इंडियन वुमेन और थाईलैंड वुमेन के दरमियान, उसमें इंडिया की टीम का स्कोर है 64-1 विकेट के नुकसान पर, जबकि खेल जारी है 6th ओवर का। आजकल वुमेन के मैच भी बड़े तवातर के साथ होते हैं इंटरनेशनल गेम्स, और इंडिया की टीम भी एक उभरती हुई ताकत है जहाँ तक वुमेन का टीम्स का ताल्लुक है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज यकीनन अच्छी टीम्स हैं, लेकिन इंडिया की टीम बहुत तगड़ी हो गई है। रावल खेल रही है 12 रन पे 8 इन्हें खेली है 1 चौका 1 छक्का लगाकर, और शिफाली वर्मा ने 33 रन बनाए हैं 17 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्का लगाया है। थाईलैंड वुमेन की डायरेक्ट में बहुत अच्छी हिस्ट्री नहीं है जहाँ तक जीतने का ताल्लुक है। इंडिया की टीम यहाँ हॉट फेवरेट है, इस बात में कोई शक नहीं, और देखना ये होगा कि इंडिया की टीम कितना बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा करेगी और फिर थाई वुमेन किस तरह से उसका ताकुब करने की कोशिश करेंगी। ये तो एक मैच का हमने जिक्र किया जनाब। इसके अलावा एक लीग भी जारी है, 8वां मैच है उस लीग का, जो कि डीबीजी और ईसी के दरमियान खेला जा रहा है, और ये यूरोपियन टी20 लीग है। 15 ओवर के बाद बना लिए हैं पहले बैटिंग करने वाली साइड डीबीजी ने 89 रन 7 विकेट के नुकसान पर। उसका स्कोर कार्ड जरा आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इन्होंने जी जनाब पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, इनका पूरा नाम है डबलिन गार्डियंस। जेम्स विंस बना सके 40 रन, बड़ी अच्छी बैटिंग की, 30 गेंदों में 5 चौके 1 छक्का लगाया। मोहम्मद वसीम 6 रन बना पाए। हैरी टेक्टर आयरलैंड के खिलाड़ी, उन्होंने 4 रन बनाए। डेरिल मिचेल न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, उन्होंने 3 रन बनाए। बेन कार्लटेस ने 4 रन स्कोर किए। संजय कृष्णामूर्ति 24 रन पे नॉट आउट हैं 1 चौका 1 छक्का लगाकर। जॉर्ज ट्रॉकवेल ने 2 रन बना रखे हैं 3 गेंदों पर। रविचंद्रन अश्विन जो कि टीम के कैप्टन है, उन्होंने 8 रन बनाए 12 गेंदों पर। और क्रिस वुड नॉट आउट हैं 1 रन पर, जबकि 3 एक्स्ट्राज हैं और 8 विकेट पे स्कोर है 95, जबकि 16वें ओवर का खेल जारी है। पहली विकेट 21 पे गिरी, मोहम्मद वसीम आउट हुए। दूसरी 45 पे हैरी टेक्टर आउट हुए। तीसरी 54 पे डेरिल मिचेल। चौथी 60 पे जेम्स विंस। पांचवी 61 पे गिरी जब आउट हुए थे कार्लटेस। छठी विकेट 65 पे गिरी जब जॉर्ज टॉकरेल आउट हुए। सातवीं विकेट 83 पे गिरी जब अश्विन आउट हुए। और 8वीं विकेट 95 पे गिरी जब संजय कृष्णामूर्ति आउट हुए। ओवर के ट्रेंट बोल्ट ने, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, 15 रन देकर 1 खिलाड़ी आउट किया। टॉम करन इंग्लैंड के 3 ओवर 21 रन 1 विकेट। मार्क वॉक ने 4 ओवर किए 28 रन, कोई विकेट नहीं। जैक जारवे से 1 ओवर 5 रन 1 विकेट। मिचेल सैंटनर न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर 3 ओवर 10 रन 4 विकेट। जे जे स्मिथ 2 ओवर 15 रन और 1 विकेट हासिल है। तो डबलिन गार्डियंस पूरी तरह से दबाव का शिकार हैं और देखते हैं कि 20 ओवर पूरे खेल भी पाते हैं कि नहीं, और अगर खेल पाते हैं तो कितने रन बना पाते हैं। दैट्स द न्यूज जहां तक इस लीग का ताल्लुक है। लेट्स गेट बैक टू द लॉर्ड्स। पाकिस्तान की एक और विकेट जनाब गिर गई है। दे आर नाउ 5 डाउन 415 और अब मैं समझता हूँ कि आई थिंक इट इज गेम ओवर फॉर देम कहना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान द लेटेस्ट डिसमिसल। मोहम्मद रिजवान ने जो है 1 रन बनाए 9 गेंदों पर, कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा पाए जनाब। और रॉबिनसन ने 1 और खिलाड़ी आउट कर दिया है। तो अब क्या किया जाए जनाब, कैसे किया जाए, कौन करे, कुछ समझ से बाहर है। पाकिस्तान की उम्मीदें टूट गई हैं दूसरे टेस्ट मैच की हजीमत से दो चार हुआ चाहते हैं वो, सूरत हाल उनके हक में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एंड पाकिस्तान जिसे कहना चाहिए हार की वर्ष पे, हार के धाने पे पहुंच गया। फिर वही बात, दिल दुखाने वाली बातें हैं क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए। ना चाहते हुए भी क्रिटिसिज्म का दिल करता है।
कैसी कैसी टीम्स को हमने इंग्लैंड में डिस्प्ले करते देखा है, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, सईद अनवर, आमिर सोहेल, जावेद मियांदाद, रबीज राजा, सलीम मलिक, यूनुस इंसमाम उल हक की मुझे याद है अभी ट्रेंट ब्रिज में 2001 में 43 सेंचुरी, 2006 में मोहम्मद यूसुफ की डबल सेंचुरी, 2000 क्या याद किया जाए। लेकिन यहाँ अब ये कि कोई खिलाड़ी पाकिस्तान का फाइट करने के लिए तैयार नहीं, कोई खिलाड़ी टफ टाइम देने के लिए तैयार नहीं, किसी भी बॉलर को, कोई बॉलर टफ टाइम देने के लिए तैयार नहीं किसी भी बल्लेबाज को। अली उस्मान आ गए तो इससे लग ही रहा है कि मामूल हक स्टिल उस कंडीशन में नहीं है कि वो बैटिंग के लिए आ सकें, शायद कोई बहुत ही जरूरत महसूस हुई तो शायद आए, अदरवाइज अब उनके आने के चांसेस ब्लीक हैं क्योंकि डिडंट कम आउट टू बैट इन द फर्स्ट इनिंग। हालांकि बड़ी तनकीद की नासिर हुसैन वगैरह ने उनसे कि उनको आना चाहिए तो बैटिंग करने के लिए, उनकी कलाई शायद जख्मी है। सलीम मलिक ने टूटे बाजू के साथ टेस्ट मैच बचाया हुआ है और बहुत सारे लोगों ने आपके वॉक्स शायद बैटिंग करने के लिए आए थे या वुड बैटिंग करने के लिए आए थे अभी पिछले ही साल इंग्लैंड के लिए। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ होता है, मगर हमारे अब क्या कहा जाए, क्या सूरत हाल है क्या नहीं है। पर इंग्लैंड की टीम शायद हुई है दूसरा मुसलसल टेस्ट मैच, होपफुली क्योंकि अच्छा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई अच्छी खबर इस टेस्ट मैच में अच्छी है। बहरहाल दूसरा हमारे पास भी अब बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, बड़े अरसे के बाद आपसे मुलाकात भी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगता है आप खत लिख सकते हैं जी एफ एम रेडियो पे, और साथ साथ बता भी सकते हैं, फेसबुक पे भी कमेंट्स कर सकते हैं, में आप फ़ोन करके भी हमारे ड्यूटी ऑफिसर्स को जो भी मौजूद है उनको बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है। किसी हवाले से आप कोई बातचीत करना चाहें, किसी खिलाड़ी से उसके हवाले से सुनना चाहें बातचीत, वो भी आपके लिए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि शेयर की जाए। पर इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह निगेबान।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुझी सकदा सिंध में सजा ऐं जज़ान आहे। पुलिस पाण मुरादो आज़ाद कराए रही आहे। सुप्रीम कोर्ट पारां आई जी तलब। इस्लामाबाद जे पिम्स अस्पताल में बाहि लॻण वारे वाक़िए खां पोइ कराची जे वॾनि सरकारी अस्पतालुनि में फायर अलार्म सिस्टम न हुजण जो इंकशाफ़। सिंध जे 63 सब रजिस्ट्रारनि पारां प्रोमोशन न वठण वारे मामले जो वॾे वज़ीर नोटिस वठी वरितो। सिंध असेंबली नवनि सूबनि ऐं यूनिटनि जे क़याम बाबति बहस जे लाइ रिथ मंज़ूरु करे वरिती। सूमर ते बहस कयो वेंदो। जामशोरे जी न्याणी दिया अनिल पाटिया जी तारीख़ी इल्मी कामयाबी पाकिस्तान ऐं सिंध जे लाइ फ़ख्रु जो बाहिस। स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा सिंध जे अस्पतालुनि लाइ बि जदीद फायर सेफ्टी निज़ाम जी ज़रूरत। सुप्रीम कोर्ट कतल जा केस दाखिल थियण में देर ऐं सिंध में पुलिसिंग जे मजमूई सूरत हाल ते सख़्त कावड़ जो इज़हार कंदे आईजी सिंध खे ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो। जस्टिस हाशिम काकड़ जे सरबराही में 3 रुकनी बेंच सखर जेल में क़ैद हिकु जवाबदार जी जेल पिटीशन ते ॿुधणी कई। केस खैरपुर ज़िले जे तालुके मीरवाह में पेश आयल कतल जे वाक़े सां लाॻापियल आहे, जंहिं में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जवाबदार नियाज़ मोहम्मद खे मौत जी सज़ा ॿुधाई हुई, जॾहिं त सिंध हाई कोर्ट सखर जे सर्किट बेंच पिणु उहा सज़ा बरक़रार रखी हुई। ॿुधणीअ दौरान जस्टिस हाशिम काकड़ कतल जा केस दाख़िल थियण में देर ऐं पुलिस जे किरदार ते सख़्त रिमार्क्स ॾींदे चयो त ॿुधणीअ हेठि केसनि में कतल जे वाक़े खां पोइ ॿिनि ॾींहनि बाद FIR दाख़िल कई वई। केतिरनि ई केसनि में पुलिस केस दाख़िल करण खां बि पासो करे छॾी। जस्टिस हाशिम काकड़ चयो त सिंध में सज़ा ऐं जज़ा जो निज़ाम ई न आहे। सिंध पुलिस पाण माण्हुनि खे वरी कराइण जो सबबु बणिजी रही आहे। अहिड़े तरीक़े सां जानवरनि खे बि नथो मारियो वञे। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर रिमार्क्स ॾींदे चयो त सखर ऐं लाड़काणे जी सूरतहाल इंतिहाई ख़राबु आहे। सुप्रीम कोर्ट मामले जी संगीनीअ खे नज़र में रखंदे IG सिंध खां अलावा एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, DIG सखर ऐं SSP खैरपुर खे पिणु तलब करे वरितो। अदालत वकीलनि खे केस जी वधीक तयारी करण जी हिदायत कंदे ॿुधणी मुलतवी करे छॾी। अदालत लाॻापियल इख़्तियारनि खे ईंदड़ ॿुधणीअ ते सिंध में कतल जे दाख़िल केसनि, जांच ऐं पुलिसिंग जी सूरतहाल बाबति जवाब ऐं वज़ाहत सां गॾु पेश थियण जी हिदायत कई। यादि रहे त अकरी 14 में 9 जनवरी 2011 ते 15 सालनि जे निगर वहीद बालाजी खे क़तलु कयो वियो हो। पुलिस ॿिनि ॾींहनि बाद क़तल जो केस दाख़िल कयो हो। ठरी मीरवा जी अदालत जवाबदार नियाज़ मोहम्मद बालाजी खे मौत जी सज़ा ॿुधाई हुई। इस्लामाबाद जे वॾी सरकारी अस्पताल पिम्स में बाहि लॻण सबबि मासूम ॿारनि जे फोत थियण वारे वाक़िए खां पोइ कराची जे वॾनि सरकारी अस्पतालुनि में पिणु बाहि खां बचाव जे इंतज़ामनि जी खोट साम्हूं आई आहे। अस्पताल ज़रियनि मूजिबि KMC जे अब्बासी शहीद अस्पताल में सिर्फ़ 13 बाहि विसाइण वारा औज़ार मौजूदु आहिनि। अस्पताल में मौजूदु अमले खे फायर ड्रिल या बाहि खां बचाव बाबति बाक़ाइदा तरबियत पिणु न ॾिनी वई आहे, जॾहिं त अस्पताल में फायर अलार्म सिस्टम बि लॻल न आहे ऐं हंगामी हालतुनि में ॿाहिरि निकिरण लाइ को मखसूस रस्तो पिणु मौजूदु न आहे। आबासी शहीद अस्पताल जे एमरजेंसी में रोज़ानो सवें, जॾहिं त OPD में 1000 खां वधीक मरीज़ अचनि था। आबासी शहीद अस्पताल जे ॿिनि जनरेटरनि मां हिक खे बेकअप ते रखियो वियो आहे। आबासी शहीद अस्पताल जे MS ॿुधायो त अस्पताल में फायर सेफ्टी सिस्टम बाबति वधीक क़दम खयां पिया वञनि। ॿिए तरफ़ जना अस्पताल जे हर वार्ड में बाहि विसाइण वारा औज़ार मौजूदु आहिनि, पर उन्हनि मां केतिरा ई ख़राब ऐं गैरफ़ाल आहिनि। अस्पताल ज़रियनि मूजिबि जना अस्पताल में आख़िरी फायर ड्रिल 2017 में कई वई हुई। अस्पताल में फायर अलार्म सिस्टम पिणु लॻल न आहे। जना अस्पताल जी जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मूजिबि फायर फाइटिंग टीम जोड़ी आहे। होॾां सिविल अस्पताल में 180 बाहि विसाइण वारा औज़ार मौजूदु आहिनि। सिंध जे रेवेन्यू खाते जे 63 सब रजिस्ट्रारनि तरफ़ां 15 ग्रेड मां 17 ग्रेड में प्रोमोशन वठण खां इनकार वारे मामले जो वॾे वज़ीर नोटिस वठी छॾियो। सिंध हुकूमत 17 ग्रेड में तरक़ी न वठण बाबति 63 सब रजिस्ट्रारनि पारां ॾिनल लिखत में दरख़्वास्तूं मंज़ूरु करे वरितियूं हुयूं, जंहिं बाद सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पारां सदन दरख़्वास्तूं मंज़ूरु कंदे नोटिफिकेशन पिणु जारी कयो वियो हो। वॾे वज़ीर मामले जो नोटिस वठंदे ॼाण हासिल कई त रेवेन्यू खाते में 17 ग्रेड जूं केतिरियूं पोस्टूं खाली आहिनि ऐं केतिरा सब रजिस्ट्रार प्रोमोशन वठण खां इनकार करे रहिया आहिनि। ज़रियनि मूजिबि ॼाणायल लिस्ट में उन्हनि सब रजिस्ट्रारनि जा बि नाला पिणु मौजूदु आहिनि, जिन खे खाते में बासर सम्झो वञे थो। रेवेन्यू खाते जे 63 सब रजिस्ट्रारनि 15 ग्रेड मां 17 ग्रेड में प्रोमोशन वठण खां इनकार कयो हो, जंहिं ते सिंधु हुकूमत सदन तरक़ी न वठण बाबति दरख़्वास्तूं मंज़ूरु करे वरितियूं आहिनि।
सिंधी असेंबली नवनि सूबनि में नवनि यूनिटनि जे क़याम बाबति थींदड़ ॻाल्हियुनि ते बहस जे लाइ रिथ मंज़ूर करे वरिती आहे। स्पीकर अवेस कादर जे सदारत हेठि सिंधी असेंबली जे इजलास में निसार अहमद खोड़े ऐवान में रिथ पेश कई। पेश कयल रिथ में चयो वियो आहे त पाकिस्तान में नवनि सूबनि ऐं यूनिटनि जे हवाले सां बहस थी रही आहे, तंहिं करे मामूली ऐं कार्रवाई मुअतल करे हिन अहम मामले ते बहस कयो वञे। स्पीकर अवेस कादर शाह चयो त सूमर ॾींहुं ॿ कलाक बहस कयो वेंदो। लॉ कॉलेज ऑफ लंडन मां ॾहनि मज़मूननि में कॉलेज जे तारीख़ में पहिरियों भेरो नुमाया पोज़ीशन माणे रिकॉर्ड क़ाइमु कंदड़ जामशोरो वासण शागिर्दियाणी पाकिस्तान ऐं सिंध जे फ़ख्रु वारी नियाणी दिया अनिल पाटिया खे सभ खां पहिरियां गवर्नर पंजाब तर्फ़ां गवर्नर हाउस लाहौर मिसन शानदार इल्मी कामयाबी जे एतिराफ़ तौरु एज़ाज़ सां नवाज़ण खां पोइ पाकिस्तान बार काउंसिल पारां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में जुमे जे ॾींहुं संदसि इल्मी क़ाबिलियत ऐं गैरमामूली कारकर्दगीअ खे साराहियो ऐं मञता ॾिनी वई आहे। उन खां पोइ मौजूद जजनि पारां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बि खेसि एज़ाज़ सां नवाज़ियो वियो, जॾहिं त पाकिस्तान जी वज़ारत क़ानून ऐं इंसाफ़ हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद पारां पिणु संदसि गैरमामूली इल्मी कामयाबियुनि जी मञता कंदे खेसि एज़ाज़ सां नवाज़ियो वियो आहे। ॿिए तरफ़ सिंध जे साझा आवंद अफ़सोस जो इज़हार कंदे चयो आहे त अफ़सोस सां चवणो पवे थो त अञा ताईं संदसि पंहिंजे सूबे सिंध जे हुकूमत तर्फ़ां या सिंध जे कंहिं बि क़ानूनी ऐं अकुलियती इदारनि बिरादरी तर्फ़ां खेसि संदसि अहिड़ी शानदार अमली कामयाबीअ ते को बि सरकारी एज़ाज़ या मञता न ॾिनी वई आहे।

0: पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। पिम्स सानिहे खां पोइ मुल्क जे अस्पतालुनि में फायर सेफ्टीअ जे इंतज़ामनि बाबति संजीदा सवाल उथी बीठा आहिनि। 14-59 वाले ॿारनि जे फोत थियण वारो अफ़सोसनाक वाक़िए खां पोइ हाणे ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त सिंध जे अस्पतालुनि खे बि फायर सेफ्टीअ जे जदीद ऐं मौसर निज़ाम सां लैस कयो वञे। सिंध हुकूमत सिहत मर्कज़नि ऐं ॿियनि सरकारी इमारतुनि जे फायर सेफ्टी इंतज़ामनि जो जाइज़ो वठण जूं हिदायतूं जारी कयूं आहिनि, जॾहिं त सूबे में हज़ारे इमारतुनि जे फायर सेफ्टी ऑडिट जो अमल पिणु जारी रखियो वियो आहे। सिंध में जना अस्पताल, सिविल अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल, लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद, NICVD ऐं ॿियूं वॾियूं अस्पतालूं रोज़ानो हज़ारे मरीज़नि ऐं सदन वारसनि खे तिबी सहूलियतूं फराहम कनि थियूं। अहिड़ियुनि अस्पतालुनि में फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, फायर एक्सटिंग्विशर, एमरजेंसी एग्ज़िट ऐं बाक़ाइदा फायर ड्रिल्स जो मौसर निज़ाम इंतिहाई ज़रूरी आहे। सिंध अस्पतालुनि जे लाइ मुक़रर सर्विस डिलीवरी मयारनि में पिण फायर सेफ्टी प्लान, महफ़ूज़ नेकाली जा रस्ता, अलार्म सिस्टम ऐं सालियानी फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन ते ज़ोर ॾिनो वियो आहे। ताज़न रिपोर्टुनि में कराची जे कुझु वॾनि सरकारी अस्पतालुनि, जिन में अब्बासी शहीद अस्पताल ऐं जिना अस्पताल शामिल आहिनि, में फायर सेफ्टी जे इंतज़ामनि बाबति खामियुनि जी निशानदेही कई वई आहे। ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त सिंध जी हर अस्पताल जो आज़ाद ऐं अमली फायर सेफ्टी ऑडिट करायो वञे, एमरजेंसी रस्ता हर वक़्तु खुलियल रखिया वञनि, फायर अलार्म ऐं ॿियो सामान बाक़ाइदा चेक कयो वञे ऐं अमले खे फायर एमरजेंसी बाबति तरबियत ॾिनी वञे। ख़ासि तौर ते ICU, नर्सरी, ऑपरेशन थिएटर, एमरजेंसी ऐं ॿारनि जे वार्ड जे लाइ अलॻि एमरजेंसी प्लान हुजणु घुरिजे, छाकाणि त उन्हनि शोबनि में मौजूदु मरीज़ पंहिंजी मदद पाण नथा करे सघनि। पिम्स सानिहो असांखे हिकु वॾो सबक़ु आहे। हाणे ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त हादसे खां पोइ जाच बदिरां हादसे खां अॻु बचाउ जो मौसर निज़ाम क़ाइमु कयो वञे, जीअं सिंध जे अस्पतालुनि में हर मरीज़ लाइ इलाज सां गॾु महफ़ूज़ माहौल बि यकीनी बणिजी सघे। हिन वक़्त जो सिंध राउंडअप ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क
2: GFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
1: अजमत जाओ जरिए गजाई शयन की इम्पोर्ट के ईंदड़ बिन साल दौरान

0: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरतेहाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
1: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे मां गुलाब खान बेण।

सिंध राउंड अप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा। सिंध में सज़ा ऐं जज़ा न आहे, पुलिस पाण मुरादो आज़ाद कराए रही आहे। सुप्रीम कोर्ट पारां आई जी तलब। इस्लामाबाद जे पिंस अस्पताल में बाहि लॻण वारे वाक़िए खां पोइ कराची जे वॾनि सरकारी अस्पतालुनि में फायर अलार्म सिस्टम न हुजण जो इंकशाफ़। सिंध जे 63 सब रजिस्ट्रार पारां प्रोमोशन न वठण वारे मामले जो वॾे वज़ीर नोटिस वठी वरितो। सिंध असेंबली नवनि सूबनि ऐं यूनिटनि जे क़याम बाबति बहस जे लाइ रिथ मंज़ूर करे वरिती, सूमर ते बहस कयो वेंदो। जामशोरे जी न्याणी दिया अनिल पाटिया जी तारीख़ी इल्मी कामयाबी, पाकिस्तान ऐं सिंध जे लाइ फ़ख्रु जो बाहिस। स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा, सिंध जे अस्पतालुनि लाइ बि जदीद फायर सेफ्टी निज़ाम जी ज़रूरत। सुप्रीम कोर्ट कतल जा केस दाखिल थियण में देर ऐं सिंध में पुलिसिंग जे मजमूई सूरत हाल ते सख़्त कावड़ जो इज़हार कंदे आई जी सिंध खे ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो। जस्टिस हाशिम काकड़ जे सरबराही में 3 रुकनी बेंच सखर जेल में क़ैद हिकु जवाबदार जी जेल पटिशन ते ॿुधणी कई। केस खैरपुर ज़िले जे तालुके मीरवाह में पेश आयल कतल जे वाक़े सां लाॻापियल आहे, जंहिं में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जवाबदार नियाज़ मोहम्मद खे मौत जी सज़ा ॿुधाई हुई, जॾहिं त सिंध हाई कोर्ट सखर जे सर्किट बेंच पिणु उहा सज़ा बरक़रार रखी हुई। ॿुधणीअ दौरान जस्टिस हाशिम काकड़ कतल जा केस दाख़िल थियण में देर ऐं पुलिस जे किरदार ते सख़्त रिमार्क्स ॾींदे चयो त ॿुधणीअ हेठि केसनि में कतल जे वाक़े खां पोइ ॿिनि ॾींहनि बाद FIR दाख़िल कई वई, केतिरनि ई केसनि में पुलिस केस दाख़िल करण खां बि पासो करे छॾी। जस्टिस हाशिम काकड़ चयो त सिंध में सज़ा ऐं जज़ा जो निज़ाम ई न आहे, सिंध पुलिस पाण माण्हुनि खे वरी कराइण जो सबबु बणिजी रही आहे, अहिड़े तरीक़े सां जानवरनि खे बि नथो मारियो वञे। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर रिमार्क्स ॾींदे चयो त सखर ऐं लाड़काणे जी सूरतहाल इंतिहाई ख़राबु आहे। सुप्रीम कोर्ट मामले जी संगीनीअ खे नज़र में रखंदे आई जी सिंध खां अलावा एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, DIG सखर ऐं SSP खेरपुर खे पिणु तलब करे वरितो। अदालत वकीलनि खे केस जी वधीक तयारी करण जी हिदायत कंदे ॿुधणी मुलतवी करे छॾी। अदालत लाॻापियल इख़्तियारनि खे ईंदड़ ॿुधणीअ ते सिंध में कतल जे दाख़िल केसनि, जांच ऐं पुलिसिंग जी सूरतहाल बाबति जवाब ऐं वज़ाहत सां गॾु पेश थियण जी हिदायत कई। यादि रहे त अकरी 14 में 9 जनवरी 2011 ते 15 सालनि जे निगर वहीद बालाजी खे क़तलु कयो वियो हो। पुलिस ॿिनि ॾींहनि बाद क़तल जो केस दाख़िल कयो हो। ठरी मीरवा जी अदालत जवाबदार नियाज़ मोहम्मद बालाजी खे मौत जी सज़ा ॿुधाई हुई। इस्लामाबाद जे वॾी सरकारी अस्पताल पिम्स में बाहि लॻण सबबि मासूम ॿारनि जे फोत थियण वारे वाक़िए खां पोइ कराची जे वॾनि सरकारी अस्पतालुनि में पिणु बाहि खां बचाव जे इंतज़ामनि जी खोट साम्हूं आई आहे। इस्पताल ज़रियनि मूजिबि KMC जे अब्बासी शहीद इस्पताल में सिर्फ़ 13 बाहि विसाइण वारा औज़ार मौजूदु आहिनि। इस्पताल में मौजूदु अमले खे फायर ड्रिल या बाहि खां बचाव बाबति बाक़ाइदा तरबियत पिणु न ॾिनी वई आहे, जॾहिं त इस्पताल में फायर अलार्म सिस्टम बि लॻल न आहे ऐं हंगामी हालतुनि में ॿाहिरि निकिरण लाइ को मखसूस रस्तो पिणु मौजूदु न आहे। आबासी शहीद अस्पताल जे एमरजेंसी में रोज़ानो सवें, जॾहिं त OPD में 1000 खां वधीक मरीज़ अचनि था। आबासी शहीद अस्पताल जे ॿिनि जनरेटरनि मां हिक खे बेकअप ते रखियो वियो आहे। आबासी शहीद अस्पताल जे MS ॿुधायो त इस्पताल में फायर सेफ्टी सिस्टम बाबति वधीक क़दम खया पिया वञनि। ॿिए तरफ़ जना अस्पताल जे हर वार्ड में बाहि विसाइण वारा औज़ार मौजूदु आहिनि, पर उन्हनि मां केतिरा ई ख़राब ऐं गैरफ़ाल आहिनि। इस्पताल ज़रियनि मूजिबि जना इस्पताल में आख़िरी फायर ड्रिल 2017 में कई वई हुई। इस्पताल में फायर अलार्म सिस्टम पिणु लॻल न आहे। जना इस्पताल जी जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मूजिबि फायर फाइटिंग टीम जोड़ी आहे, होॾां सिविल इस्पताल में 180 बाहि विसाइण वारा औज़ार मौजूदु आहिनि। सिंध जे रेवेन्यू खाते जे 63 सब रजिस्ट्रारनि तरफ़ां 15 ग्रेड मां 17 ग्रेड में प्रोमोशन वठण खां इनकार वारे मामले जो वॾे वज़ीर नोटिस वठी छॾियो। सिंध हुकूमत 17 ग्रेड में तरक़ी न वठण बाबति 63 सब रजिस्ट्रारनि पारां ॾिनल लिखत में दरख़्वास्तूं मंज़ूरु करे वरितियूं हुयूं, जंहिं बाद सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पारां संदन दरख़्वास्तूं मंज़ूरु कंदे नोटिफिकेशन पिणु जारी कयो वियो हो। वॾे वज़ीर मामले जो नोटिस वठंदे ॼाण हासिल कई त रेवेन्यू खाते में 17 ग्रेड जूं केतिरियूं पोस्टूं खाली आहिनि ऐं केतिरा सब रजिस्ट्रार प्रोमोशन वठण खां इनकार करे रहिया आहिनि। ज़रियनि मूजिबि ॼाणायल लिस्ट में उन्हनि सब रजिस्ट्रारनि जा बि नाला पिणु मौजूदु आहिनि, जिन खे खाते में बासर सम्झो वञे थो। रेवेन्यू खाते जे 63 सब रजिस्ट्रारनि 15 ग्रेड मां 17 ग्रेड में प्रोमोशन वठण खां इनकार कयो हो, जंहिं ते सिंधु हुकूमत सदन तरक़ी न वठण बाबति दरख़्वास्तूं मंज़ूरु करे वरितियूं आहिनि।
सिंधी असेंबली नवनि सूबनि में नवनि यूनिटनि जे क़याम बाबति थींदड़ ॻाल्हियुनि ते बहस जे लाइ रिथ मंज़ूर करे वरिती आहे। स्पीकर अवेस कादर जे सदारत हेठि सिंधी असेंबली जे इजलास में निसार अहमद खोड़े ऐवान में रिथ पेश कई। पेश कयल रिथ में चयो वियो आहे त पाकिस्तान में नवनि सूबनि ऐं यूनिटनि जे हवाले सां बहस थी रही आहे, तंहिं करे मामूली ऐं कार्रवाई मुअतल करे हिन अहम मामले ते बहस कयो वञे। स्पीकर अवेस कादर शाह चयो त सूमर ॾींहुं ॿ कलाक बहस कयो वेंदो। लॉ कॉलेज ऑफ लंडन मां ॾहनि मज़मूननि में कॉलेज जे तारीख़ में पहिरियों भेरो नुमाया पोज़ीशन माणे रिकॉर्ड क़ाइमु कंदड़ जामशोरो वासण शागिर्दियाणी पाकिस्तान ऐं सिंध जे फ़ख्रु वारी नियाणी दिया अनिल पाटिया खे सभ खां पहिरियां गवर्नर पंजाब तर्फ़ां गवर्नर हाउस लाहौर मिसन शानदार इल्मी कामयाबी जे एतिराफ़ तौरु एज़ाज़ सां नवाज़ण खां पोइ पाकिस्तान बार काउंसिल पारां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में जुमे जे ॾींहुं संदसि इल्मी क़ाबिलियत ऐं गैरमामूली कारकर्दगीअ खे साराहियो ऐं मञता ॾिनी वई आहे। उन खां पोइ मौजूद जजनि पारां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बि एज़ाज़ सां नवाज़ियो वियो, जॾहिं त पाकिस्तान जी वज़ारत क़ानून ऐं इंसाफ़ हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद पारां पिणु संदसि गैरमामूली इल्मी कामयाबियुनि जी मञता कंदे खे एज़ाज़ सां नवाज़ियो वियो आहे। ॿिए तरफ़ सिंध जे साजावंद अफ़सोस जो इज़हार कंदे चयो आहे त अफ़सोस सां चवणो पवे थो त अञा ताईं संदसि पंहिंजे सूबे सिंध जे हुकूमत तर्फ़ां या सिंध जे कंहिं बि क़ानूनी ऐं अकुलियती इदारनि बिरादरी तर्फ़ां खेसि संदसि अहिड़ी शानदार अमली कामयाबीअ ते को बि सरकारी एज़ाज़ या मञता न ॾिनी वई आहे।

0: पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। पिम्स सानिहे खां पोइ मुल्क जे अस्पतालुनि में फायर सेफ्टीअ जे इंतज़ामनि बाबति संजीदा सवाल उथी बीठा आहिनि। 14 नवजवाल ॿारनि जे फोत थियण वारो अफ़सोसनाक वाक़िए खां पोइ हाणे ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त सिंध जे अस्पतालुनि खे बि फायर सेफ्टीअ जे जदीद ऐं मौसर निज़ाम सां लैस कयो वञे। सिंध हुकूमत सिहत मर्कज़नि ऐं ॿियनि सरकारी इमारतुनि जे फायर सेफ्टी इंतज़ामनि जो जाइज़ो वठण जूं हिदायतूं जारी कयूं आहिनि, जॾहिं त सूबे में हज़ारे इमारतुनि जे फायर सेफ्टी ऑडिट जो अमल पिणु जारी रखियो वियो आहे। सिंध में जना अस्पताल, सिविल अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल, लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद, NICVD ऐं ॿियूं वॾियूं अस्पतालूं रोज़ानो हज़ारे मरीज़नि ऐं सदन वारसनि खे तिबी सहूलियतूं फराहम कनि थियूं। अहिड़ियुनि अस्पतालुनि में फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, फायर एक्सटिंगुशर, एमरजेंसी एग्ज़िट ऐं बाक़ाइदा फायर ड्रिल्स जो मौसर निज़ाम इंतिहाई ज़रूरी आहे। सिंध अस्पतालुनि जे लाइ मुक़रर सर्विस डिलीवरी मयारनि में पिण फायर सेफ्टी प्लान, महफ़ूज़ नेकाली जा रस्ता, अलार्म सिस्टम ऐं सालियानी फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन ते ज़ोर ॾिनो वियो आहे। ताज़नि रिपोर्टुनि में कराची जे कुझु वॾनि सरकारी अस्पतालुनि, जिन में अब्बासी शहीद अस्पताल ऐं जिना अस्पताल शामिल आहिनि, में फायर सेफ्टी जे इंतज़ामनि बाबति खामियुनि जी निशानदेही कई वई आहे। ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त सिंध जी हर अस्पताल जो आज़ाद ऐं अमली फायर सेफ्टी ऑडिट करायो वञे, एमरजेंसी रस्ता हर वक़्तु खुलियल रखिया वञनि, फायर अलार्म ऐं ॿियो सामान बाक़ाइदा चेक कयो वञे ऐं अमले खे फायर एमरजेंसी बाबति तरबियत ॾिनी वञे। ख़ासि तौर ते ICU, नर्सरी, ऑपरेशन थिएटर, एमरजेंसी ऐं ॿारनि जे वार्ड जे लाइ अलॻि एमरजेंसी प्लान हुजणु घुरिजे, छाकाणि त उन्हनि शोबनि में मौजूदु मरीज़ पंहिंजी मदद पाण नथा करे सघनि। पिम सानिहो असांखे हिकु वॾो सबक़ु आहे। हाणे ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त हादसे खां पोइ जाच बदिरां हादसे खां अॻु बचाउ जो मौसर निज़ाम क़ाइमु कयो वञे, जीअं सिंध जे अस्पतालुनि में हर मरीज़ लाइ इलाज सां गॾु महफ़ूज़ माहौल बि यकीनी बणिजी सघे। हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंड अप, ॿिए आचर जे सिंध राउंड अप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: ॾाढो सुठो
1: GA FM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरण ऐं सकरण जो आवाज़
2: GFM 90.8।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते सुनी।

Stop!

सिंध राउंड अप में अज अवां बुझी सकदा सिंध में सजा ऐं जज़ान आहे। पुलिस पाण मुरादो आज़ाद कराए रही आहे। सुप्रीम कोर्ट पारां आईजी तलब। इस्लामाबाद जे पिम्स अस्पताल में बाहि लॻण वारे वाक़े खां पोइ कराची जे वॾनि सरकारी अस्पतालुनि में फायर अलार्म सिस्टम न हुजण जो इंकशाफ़। सिंध जे 63 सब रजिस्ट्रारनि पारां प्रोमोशन न वठण वारे मामले जो वॾे वज़ीर नोटिस वठी वरितो। सिंध असेंबली नवनि सूबनि ऐं यूनिटनि जे क़याम बाबति बहस जे लाइ रिथ मंज़ूरु करे वरिती। सूमर ते बहस कयो वेंदो। जामशोरे जी न्याणी दिया अनिल पाटिया जी तारीख़ी इल्मी कामयाबी पाकिस्तान ऐं सिंध जे लाइ फ़ख्रु जो बाहिस। स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा सिंध जे अस्पतालुनि लाइ बि जदीद फायर सेफ्टी निज़ाम जी ज़रूरत। सुप्रीम कोर्ट कतल जा केस दाखिल थियण में देर ऐं सिंध में पुलिसिंग जे मजमूई सूरत हाल ते सख़्त कावड़ जो इज़हार कंदे आईजी सिंध खे ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो। जस्टिस हाशिम काकड़ जे सरबराहीअ में 3 रुकनी बेंच सखर जेल में क़ैद हिकु जवाबदार जी जेल पिटीशन ते ॿुधणी कई। केस खैरपुर ज़िले जे तालुके मीरवाह में पेश आयल कतल जे वाक़े सां लाॻापियल आहे, जंहिं में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जवाबदार नियाज़ मोहम्मद खे मौत जी सज़ा ॿुधाई हुई, जॾहिं त सिंध हाई कोर्ट सखर जे सर्किट बेंच पिण उहा सज़ा बरक़रार रखी हुई। ॿुधणीअ दौरान जस्टिस हाशिम काकड़ कतल जा केस दाख़िल थियण में देर ऐं पुलिस जे किरदार ते सख़्त रिमार्क्स ॾींदे चयो त ॿुधणीअ हेठि केसनि में कतल जे वाक़े खां पोइ ॿिनि ॾींहनि बाद FIR दाख़िल कई वई। केतिरनि ई केसनि में पुलिस केस दाख़िल करण खां बि पासो करे छॾी। जस्टिस हाशिम काकड़ चयो त सिंध में सज़ा ऐं जज़ा जो निज़ाम ई न आहे। सिंध पुलिस पाण माण्हुनि खे वरी कराइण जो सबबु बणिजी रही आहे। अहिड़े तरीक़े सां जानवरनि खे बि नथो मारियो वञे। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर रिमार्क्स ॾींदे चयो त सखर ऐं लाड़काणे जी सूरतहाल इंतिहाई ख़राबु आहे। सुप्रीम कोर्ट मामले जी संगीनीअ खे नज़र में रखंदे आईजी सिंध खां अलावा एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, DIG सखर ऐं SSP खैरपुर खे पिण तलब करे वरितो। अदालत वकीलनि खे केस जी वधीक तयारी करण जी हिदायत कंदे ॿुधणी मुलतवी करे छॾी। अदालत लाॻापियल इख़्तारनि खे ईंदड़ ॿुधणीअ ते सिंध में कतल जे दाख़िल केसनि, जांच ऐं पुलिसिंग जी सूरतहाल बाबति जवाब ऐं वज़ाहत सां गॾु पेश थियण जी हिदायत कई। यादि रहे त अकरी चौधगीअ में 9 जनवरी 2011 ते 15 सालनि जे निगर वहीद बालाजी खे क़तलु कयो वियो हो। पुलिस ॿिनि ॾींहनि बाद कतल जो केस दाख़िल कयो हो। ठरी मीरवा जी अदालत जवाबदार नियाज़ मोहम्मद बालाजी खे मौत जी सज़ा ॿुधाई हुई। इस्लामाबाद जे वॾी सरकारी अस्पताल पिम्स में बाहि लॻण सबबि मासूम ॿारनि जे फोत थियण वारे वाक़े खां पोइ कराची जे वॾनि सरकारी अस्पतालुनि में पिण बाहि खां बचाव जे इंतज़ामनि जी खोट साम्हूं आई आहे। इस्पताल ज़रियनि मूजिबि KMC जे अब्बासी शहीद इस्पताल में सिर्फ़ 13 बाहि विसाइण वारा औज़ार मौजूदु आहिनि। इस्पताल में मौजूदु अमले खे फायर ड्रिल या बाहि खां बचाव बाबति बाक़ायदा तरबियत पिण न ॾिनी वई आहे, जॾहिं त इस्पताल में फायर अलार्म सिस्टम बि लॻल न आहे ऐं हंगामी हालतुनि में ॿाहिरि निकिरण लाइ को मखसूस रस्तो पिण मौजूदु न आहे। आबासी शहीद अस्पताल जे एमरजेंसी में रोज़ानो सवें, जॾहिं त OPD में 1000 खां वधीक मरीज़ अचनि था। आबासी शहीद अस्पताल जे ॿिनि जनरेटरनि मां हिक खे बेकअप ते रखियो वियो आहे। आबासी शहीद अस्पताल जे MS ॿुधायो त इस्पताल में फायर सेफ्टी सिस्टम बाबति वधीक क़दम खयां पिया वञनि। ॿिए तरफ़ जना अस्पताल जे हर वार्ड में बाहि विसाइण वारा औज़ार मौजूदु आहिनि, पर उन्हनि मां केतिरा ई ख़राब ऐं गैर फ़ाल आहिनि। इस्पताल ज़रियनि मूजिबि जना इस्पताल में आख़िरी फायर ड्रिल 2017 में कई वई हुई। इस्पताल में फायर अलार्म सिस्टम पिण लॻल न आहे। जना इस्पताल जी जॉइंट एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर मूजिबि फायर फाइटिंग टीम जोड़ी आहे। होॾां सिविल इस्पताल में 180 बाहि विसाइण वारा औज़ार मौजूदु आहिनि। सिंध जे रेवेन्यू खाते जे 63 सब रजिस्ट्रारनि तरफ़ां 15 ग्रेड मां 17 ग्रेड में प्रोमोशन वठण खां इनकार वारे मामले जो वॾे वज़ीर नोटिस वठी छॾियो। सिंध हुकूमत 17 ग्रेड में तरक़ी न वठण बाबति 63 सब रजिस्ट्रारनि पारां ॾिनल लिखत में दरख़्वास्तूं मंज़ूरु करे वरितियूं हुयूं, जंहिं बाद सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पारां संदनि दरख़्वास्तूं मंज़ूरु कंदे नोटिफिकेशन पिण जारी कयो वियो हो। वॾे वज़ीर मामले जो नोटिस वठंदे ॼाण हासिल कई त रेवेन्यू खाते में 17 ग्रेड जूं केतिरियूं पोस्टूं खाली आहिनि ऐं केतिरा सब रजिस्ट्रार प्रोमोशन वठण खां इनकार करे रहिया आहिनि। ज़रियनि मूजिबि ॼाणायल लिस्ट में उन्हनि सब रजिस्ट्रारनि जा बि नाला पिण मौजूदु आहिनि, जिन खे खाते में बासर सम्झो वञे थो। रेवेन्यू खाते जे 63 सब रजिस्ट्रारनि 15 ग्रेड मां 17 ग्रेड में प्रोमोशन वठण खां इनकार कयो हो, जंहिं ते सिंधु हुकूमत सदन तरक़ी न वठण बाबति दरख़्वास्तूं मंज़ूरु करे वरितियूं आहिनि।
सिंधी असेंबली नवनि सूबनि में नवनि यूनिटनि जे क़याम बाबति थींदड़ ॻाल्हियुनि ते बहस जे लाइ रिथ मंज़ूर करे वरिती आहे। स्पीकर अवेस कादर जे सदारत हेठि सिंधी असेंबली जे इजलास में निसार अहमद खोड़े ऐवान में रिथ पेश कई। पेश कयल रिथ में चयो वियो आहे त पाकिस्तान में नवनि सूबनि ऐं यूनिटनि जे हवाले सां बहस थी रही आहे, तंहिं करे मामूली ऐं कार्रवाई मुअतल करे हिन अहम मामले ते बहस कयो वञे। स्पीकर अवेस कादर शाह चयो त सूमर ॾींहुं ॿ कलाक बहस कयो वेंदो। लॉ कॉलेज ऑफ लंडन मां ॾहनि मज़मूननि में कॉलेज जे तारीख़ में पहिरियों भेरो नुमाया पोज़ीशन माणे रिकॉर्ड क़ाइमु कंदड़ जामशोरो वासण शागिर्दियाणी पाकिस्तान ऐं सिंध जे फ़ख्रु वारी नियाणी दिया अनिल पाटिया खे सभ खां पहिरियां गवर्नर पंजाब तर्फ़ां गवर्नर हाउस लाहौर मिशन शानदार इल्मी कामयाबी जे एतिराफ़ तौरु एज़ाज़ सां नवाज़ण खां पोइ पाकिस्तान बार काउंसिल पारां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में जुमे जे ॾींहुं संदसि इल्मी क़ाबिलियत ऐं गैरमामूली कारकर्दगीअ खे साराहियो ऐं मञता ॾिनी वई आहे। उन खां पोइ मौजूद जजनि पारां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बि खेसि एज़ाज़ सां नवाज़ियो वियो, जॾहिं त पाकिस्तान जी वज़ारत क़ानून ऐं इंसाफ़ हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद पारां पिणु संदसि गैरमामूली इल्मी कामयाबियुनि जी मञता कंदे खेसि एज़ाज़ सां नवाज़ियो वियो आहे। ॿिए तरफ़ सिंध जे साजावंद अफ़सोस जो इज़हार कंदे चयो आहे त अफ़सोस सां चवणो पवे थो त अञा ताईं संदसि पंहिंजे सूबे सिंध जे हुकूमत तर्फ़ां या सिंध जे कंहिं बि क़ानूनी ऐं अकुलियती इदारनि बिरादरी तर्फ़ां खेसि संदसि अहिड़ी शानदार अमली कामयाबीअ ते को बि सरकारी एज़ाज़ या मञता न ॾिनी वई आहे।

0: पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। पिम्स सानिहे खां पोइ मुल्क जे अस्पतालुनि में फायर सेफ्टीअ जे इंतज़ामनि बाबति संजीदा सवाल उथी बीठा आहिनि। 14 नवंजाह वाले ॿारनि जे फोत थियण वारो अफ़सोसनाक वाक़िए खां पोइ हाणे ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त सिंध जे अस्पतालुनि खे बि फायर सेफ्टीअ जे जदीद ऐं मौसर निज़ाम सां लैस कयो वञे। सिंध हुकूमत सिहत मर्कज़नि ऐं ॿियनि सरकारी इमारतुनि जे फायर सेफ्टी इंतज़ामनि जो जाइज़ो वठण जूं हिदायतूं जारी कयूं आहिनि, जॾहिं त सूबे में हज़ारे इमारतुनि जे फायर सेफ्टी ऑडिट जो अमल पिण जारी रखियो वियो आहे। सिंध में जना अस्पताल, सिविल अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल, लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद, NICVD ऐं ॿियूं वॾियूं अस्पतालूं रोज़ानो हज़ारे मरीज़नि ऐं सदन वारसनि खे तिबी सहूलियतूं फराहम कनि थियूं। अहिड़ियुनि अस्पतालुनि में फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, फायर एक्सटिंग्विशर, एमरजेंसी एग्ज़िट ऐं बाक़ाइदा फायर ड्रिल्स जो मौसर निज़ाम इंतिहाई ज़रूरी आहे। सिंध अस्पतालुनि जे लाइ मुक़रर सर्विस डिलीवरी मयारनि में पिण फायर सेफ्टी प्लान, महफ़ूज़ नेकाली जा रस्ता, अलार्म सिस्टम ऐं सालियानी फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन ते ज़ोर ॾिनो वियो आहे। ताज़नि रिपोर्टुनि में कराची जे कुझु वॾनि सरकारी अस्पतालुनि, जिन में अब्बासी शहीद अस्पताल ऐं जिना अस्पताल शामिल आहिनि, में फायर सेफ्टी जे इंतज़ामनि बाबति ख़ामियुनि जी निशानदेही कई वई आहे। ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त सिंध जी हर अस्पताल जो आज़ाद ऐं अमली फायर सेफ्टी ऑडिट करायो वञे, एमरजेंसी रस्ता हर वक़्तु खुलियल रखिया वञनि, फायर अलार्म ऐं ॿियो सामान बाक़ाइदा चेक कयो वञे ऐं अमले खे फायर एमरजेंसी बाबति तरबियत ॾिनी वञे। ख़ासि तौर ते ICU, नर्सरी, ऑपरेशन थिएटर, एमरजेंसी ऐं ॿारनि जे वार्ड जे लाइ अलॻि एमरजेंसी प्लान हुजणु घुरिजे, छाकाणि त उन्हनि शोबनि में मौजूदु मरीज़ पंहिंजी मदद पाण नथा करे सघनि। पिम्स सानिहो असांखे हिकु वॾो सबक़ आहे। हाणे ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त हादसे खां पोइ जांच बदिरां हादसे खां अॻु बचाउ जो मौसर निज़ाम क़ाइमु कयो वञे, जीअं सिंध जे अस्पतालुनि में हर मरीज़ लाइ इलाज सां गॾु महफ़ूज़ माहौल बि यकीनी बणिजी सघे। हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंडअप, ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।